नमस्कार श्रोता साथियों, मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूँ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज वार रविवार, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारी भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा विशेष कार्यक्रम आराधना से। फिर हम आपको रूप कराएंगे महापुरुषों की प्रेम गाथा से। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी क्रम में अगला कार्यक्रम होगा श्रोता साथियों हमारा प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में। श्रोता साथियों, फिर आपको रूबरू कराएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर, जिसमें आप जानेंगे उनके जीवन परिचय को। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी कड़ी में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा गांधी जी से जुड़ा विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। श्रोता साथियों, फिर हम रुक करेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे नए नए व्यंजनों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। श्रोता साथियों, जैसा कि आपको मैं कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बताई रही हूं, तो इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। श्रोता साथियों, फिर 10 से 1 बजे तक होगी मनोरंजन की पूरी भरमार फिल्म संगीत लोक संगीत के साथ में, जिसमें आप सुन पाएंगे नए पुराने फिल्मी संगीत और हमारी लोक परंपराओं से जुड़े राजस्थानी गीतों को। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे
1: होवे। आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, मैदान में जीत केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, उसके पीछे अनुशासन, अभ्यास, हार न मानने का जज्बा होता है। जी हाँ, खेल हमें केवल जीतना नहीं सिखाता, बल्कि गिरकर फिर उठना और लगातार आगे बढ़ना सिखाता है।

0: जी हाँ साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर एक नए महान पुरुष की जीवन परिचय के साथ में। जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारा विषय है भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को लेकर। इनकी जो जयंती है वो हर वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाई जाती है। यह दिन हमें खेलों के महत्व को समझने और देश के महान खिलाड़ियों के योगदान को याद करने का अवसर देता है। आज हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि एक ऐसे खिलाड़ी के जीवन के बारे में जिनकी हॉकी की कला ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जिन्हें प्यार से हॉकी का जादूगर कहा गया है।
0: बिल्कुल अंजलि, मेजर ध्यानचंद केवल एक महान खिलाड़ी ही नहीं थे बल्कि अनुशासन, मेहनत, देशभक्ति और खेल भावना के प्रतीक भी थे। उन्होंने ऐसे समय में भारत का गौरव बढ़ाया जब देश स्वतंत्र नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदानों में जब भारतीय टीम जीतती थी तब भारत का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता था। उनका जीवन आज भी खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में अगर आपको बताएं तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, में हुआ था। उनके पिता का नाम समेश्वर दत्त सिंह था अंजलि। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। पिता की नौकरी के कारण परिवार को अलग अलग स्थानों पर रहना पड़ा। ध्यानचंद जी का बचपन सामान्य परिस्थितियों में बीता। बचपन में उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन वे विश्व के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में गिने जाएंगे। उनका जीवन ये साबित करता है कि महानता किसी व्यक्ति के जन्म के साथ नहीं आती बल्कि निरंतर मेहनत, अभ्यास और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, बचपन में उनका खेलों के प्रति विशेष झुकाव नहीं था, लेकिन आगे चलकर हॉकी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि उन्हें हॉकी से इतना लगाव था कि वे खाली समय में अभ्यास करते रहते थे।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे उनके खेल में ऐसी कुशलता आने लगी कि वे मैदान पर गेंद को अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रसिद्ध हो गए। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ध्यानचंद वर्ष 1922 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। सेना में रहते हुए उन्हें हॉकी खेलने का भरपूर अवसर मिला क्योंकि जागृति जी, सेना में अनुशासन और नियमित अभ्यास ने उनके खेल को और मजबूत बना दिया।
0: बिल्कुल,
1: देर रात तक चांदनी में हॉकी का अभ्यास करते थे, इसी वजह से उनके नाम के साथ चंद जुड़ गया और वे ध्यान सिंह से ध्यान चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है श्रोता साथियों कि प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर अभ्यास और अनुशासन कितना जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि, ध्यानचंद जी ने कम उम्र में भारतीय सेना में प्रवेश किया। सेना का वातावरण अनुशासन और जिम्मेदारी से भरा हुआ था और इसी वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेना में रहते हुए उन्हें हॉकी खेलने का अवसर मिला। उन्होंने हॉकी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना बल्कि उसे अपने जीवन का लक्ष्य भी बना लिया। वे मैदान पर घंटों अभ्यास करते थे, वे अपनी कमजोरियों को पहचानते थे और उन्हें दूर करने के लिए लगातार मेहनत करते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अभ्यास को सफलता की कुंजी मानते थे। वे जानते थे कि प्रतिभा तभी चमकती है जब उसके पीछे मेहनत और अनुशासन होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मन से हुआ। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए जर्मन को हराया और स्वर्ण पदक जीता। ध्यानचंद के खेल की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। उनके शानदार नियंत्रण, गेंद पर पकड़ और गोल करने की क्षमता ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके खेल को देखकर जागृति जी, लोगों को लगता था जैसे हॉकी की गेंद उनके स्टिक से चिपकी हुई है। इसी कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने 1936 के बर्लिन ओलंपिक के बारे में बताया, यही हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं चंद नाम पढ़ने की कहानी को लेकर।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ध्यानचंद के नाम के साथ चंद जुड़ने के पीछे एक प्रसिद्ध कारण बताया जाता है। वे रात में चांदनी रात के समय भी हॉकी का अभ्यास किया करते थे। उस समय उनके साथी उन्हें मजाक और स्नेह से चंद कहने लगे। धीरे धीरे यही नाम उनके जीवन का हिस्सा बन गया और वे दुनिया भर में ध्यानचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: बिल्कुल
0: श्रोता, ये घटना हमें बताती है कि सफलता पाने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित हो सकता है। जब दूसरे लोग आराम कर रहे होते थे तब ध्यानचंद अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करते थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, ध्यानचंद जितने महान खिलाड़ी थे उतने ही सरल और अनुशासित व्यक्ति भी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने कभी अपनी प्रसिद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे अभ्यास, अनुशासन और टीम भावना को बहुत महत्व देते थे। उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण टीम और देश का सम्मान था। यही कारण है कि उनका नाम केवल हॉकी के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीय खेल संस्कृति में भी सम्मान के साथ लिया जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी के जीवन परिचय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से। तो अंजलि, बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि साथियों हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही बात कहना चाहेंगे आपसे कि ध्यानचंद के खेल की सबसे बड़ी ताकत थी गेंद पर असाधारण नियंत्रण, क्योंकि जागृति जी वे मैदान में परिस्थितियों को बहुत तेजी से समझते थे। विरोधी खिलाड़ियों की स्थिति को देखकर तुरंत निर्णय लेते और अपने साथियों के लिए गोल करने का अवसर बनाते।
1: बिल्कुल,
0: उनकी खेल शैली में गति, नियंत्रण, धैर्य और टीम वर्क का अद्भुत मेल था। आज के खिलाड़ियों के लिए भी उनका जीवन एक उदाहरण ही है कि खेल में केवल शारीरिक ताकत पर्याप्त नहीं होती, मानसिक एकाग्रता, अनुशासन और निरंतर अभ्यास भी उतने ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, अगर यही 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के बारे में हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद के अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: भारतीय हॉकी टीम ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीता। इस सफलता ने भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ध्यानचंद के खेल ने दुनिया के खेल प्रेमियों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। भारतीय टीम की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत हॉकी के क्षेत्र में दुनिया की मजबूत टीमों में से एक बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ध्यानचंद के लिए यह केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके खेल के माध्यम से भारत का नाम दुनिया में ऊंचा हो रहा था।
0: बिल्कुल जागृति जी, मेजर ध्यानचंद को उनके शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने 1965 में पद्मभूषण से सम्मानित किया था। उनके सम्मान में भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस दिन श्रोता साथियों खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है और देश भर में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जीवन बच्चों और युवाओं को कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। अगर किसी बच्चे को खेल पसंद है तो परिवार और समाज को उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हर बच्चा खिलाड़ी बने यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे को खेल और शारीरिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। खेल बच्चों में अनुशासन बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास विकसित करते हैं, टीम भावना सिखाते हैं, हार को स्वीकार करना सिखाते हैं। इसी के साथ जागृति जी शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाते हैं, नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैदान में मिली हार अंत नहीं होती, वह अगली जीत की तैयारी होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बता रहे हैं, तो मेजर ध्यानचंद जी का जीवन देशभक्ति का भी उदाहरण है। उन्होंने ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। उस देश में भारतीय खिलाड़ियों की जीत देशवासियों के लिए गर्व और उत्साह का कारण बनती थी। जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती थी तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ भारत की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती थी।
0: बिल्कुल,
1: ध्यानचंद ने अपने शानदार खेल से भारत की पहचान को मजबूत किया। उनकी देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं श्रोताओं, बल्कि उनके कार्यों में दिखाई देती है। वे अपने खेल को देश के सम्मान से जोड़कर देखते थे। और रही बात अनुशासन और मेहनत की, तो श्रोताओं ध्यानचंद जी की सफलता का सबसे बड़ा आधार उनकी मेहनत और अनुशासन ही था। वे नियमित अभ्यास करते थे, अपने खेल की छोटी छोटी कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। आज के युवाओं के सामने बहुत सारे प्रकार के आकर्षण और डिस्ट्रेक्शन है। ऐसे समय में ध्यानचंद जी का जीवन हमें याद दिलाता है अंजलि कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और व्यक्ति नियमित मेहनत करे तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सफलता हमें संदेश देती है कि प्रतिभा हमें शुरुआत दिला सकती है, लेकिन निरंतर मेहनत ही हमें मंजिल तक पहुंचाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, हमारे गाँव में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो केवल सही अवसर, मैदान और प्रोत्साहन की।
1: बिल्कुल,
0: कई बच्चे आर्थिक परिस्थितियों के कारण खेलों में आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसे में समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गांव में उपलब्ध खाली स्थान को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जा सकता है। बच्चे कबड्डी, खो खो, दौड़, फुटबॉल, हॉकी और अन्य स्थानीय खेलों में भाग ले सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करके बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जा सकता है। श्रोता साथियों, मेजर ध्यानचंद जी का जीवन हमें बताता है कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी से उत्कृष्ट कार्य करना भी देश की सेवा है। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। उन्होंने यह दिखाया कि मैदान में मेहनत करने वाला खिलाड़ी भी देश के लिए उतना ही सम्मान अर्जित कर सकता है जितना किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाला व्यक्ति। आज के युवा भी अपनी प्रतिभा को

0: पहचान कर उसे देश और समाज के हित में उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत के महानतम खिलाड़ियों में स्थान प्राप्त है। उनके नाम से देश में अनेक खेल संस्थान, पुरस्कार और प्रतियोगिताएं जुड़ी हुई हैं। उनका जीवन भारतीय खेल इतिहास की अमूल्य विरासत है। श्रोता, उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई पदक या पुरस्कार मात्र नहीं, बल्कि वो प्रेरणा है जो उन्होंने करोड़ों भारतीयों को दी है। उन्होंने दिखाया कि भारतीय प्रतिभा विश्व मंच पर किसी से कम नहीं। मेजर ध्यानचंद जी का निधन 3 दिसंबर 1969 को हुआ। उनके निधन से भारतीय खेल जगत ने एक महान सितारा खो दिया, लेकिन महान व्यक्तित्व कभी वास्तव में समाप्त नहीं होते। उनके विचार, उपलब्धियां और जीवन से मिलने वाली सीख हमेशा जीवित रहती है। आज भी जब भारत में हॉकी की चर्चा होती है श्रोताओं, तो ध्यानचंद जी का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक का जादू भले ही इतिहास का हिस्सा बन गया हो अंजलि, लेकिन उनकी मेहनत, अनुशासन और देश प्रेम का जादू आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। यही महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम भी अपने चुने हुए क्षेत्र में पूरी निष्ठा से मेहनत करें और अपने कार्यों से अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, अब समय हो चला है तो साथियों को हम कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्चर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम कथा कहानी को एक नए शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है बही खाता। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि व्यापारी अपनी दुकान का बही खाता इसलिए संभाल कर रखता है ताकि उसे पता रहे कि कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना बाकी है। लेकिन क्या कभी हमने अपने जीवन का बही खाता खोला है श्रोताओं? नहीं, क्योंकि कितना समय हमने सीखने में लगाया ये हम नहीं जानते, कितना समय दूसरों की मदद में दिया ये हम नहीं जानते, कितनी बार असफल होकर हमने फिर कोशिश की ये भी हम नहीं जानते, कितने सपने हमने केवल सोचे और कितनों के लिए कदम बढ़ाया ये भी हम नहीं जानते। शायद जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर इंसान के पास एक अदृश्य बही खाता होता है। उसमें रुपए पैसे नहीं बल्कि हमारी कर्म, फैसले, समय और संस्कार जमा होते हैं। इसी विचार को समझाने वाली कहानी है एक युवा की। उस युवा का नाम है निखिल। तो ये कहानी आज मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज की कहानी का शीर्षक है बही खाता। श्रोताओं, कहानी शुरू होती है इस तरह से। निखिल नाम का एक युवा है। निखिल एक छोटे से कस्बे का साधारण लड़का था। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पिता हमेशा कहते थे, बेटा दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन हिसाब हमेशा बड़ा साफ होना चाहिए। निखिल को पिता की बात सिर्फ व्यापार से जुड़ी लगती थी। वो सोचता था कि पिता हर शाम बैठकर हिसाब किताब क्यों करते हैं, कौन आया, कितना सामान लिया, कितना पैसा दिया, सब कुछ एक पुरानी लाल बही में लिखा जाता था। निखिल पढ़ाई पूरी कर चुका था और अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे उसके सपने थे। वो चाहता था कि अच्छी नौकरी मिले, शहर जाए और अपनी जिंदगी बदल दे। लेकिन दोस्तों, उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वो अपने समय का हिसाब ही नहीं रखता था। सुबह देर से उठता था, मोबाइल पर घंटों समय बिता देता था, दोस्तों के साथ बिना उद्देश्य घूमता रहता और फिर रात में कहता, कल से मेहनत शुरू करूंगा। उसका कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसके पिताजी ने उसे दुकान पर बुलाया और कहा, निखिल आज दुकान का हिसाब तुम लिखोगे। निखिल ने बही खोली और पूरे दिन का हिसाब लिखने लगा। शाम को उसके पिताजी ने पूछा, बताओ आज कितना आया और कितना गया। निखिल ने तुरंत हिसाब बता दिया। पिता मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अब एक और हिसाब करोगे। निखिल ने पूछा, किसका? पिता ने कहा, अपने जीवन का। श्रोताओं, निखिल हंस पड़ा। वो बोला कि जीवन का कभी कोई बही खाता होता है क्या? तभी पिताजी ने कहा, होता है बेटा, बस उसमें रुपए नहीं लिखे जाते। उन्होंने बही का एक खाली पन्ना खोला और ऊपर लिखा, निखिल के जीवन का बही खाता। फिर उन्होंने पहला कॉलम बनाया, जमा, दूसरा खर्च। इस पर निखिल ने पूछा, इसमें क्या लिखना है पिताजी? तब पिताजी बोले, जमा में लिखेंगे सीखा हुआ ज्ञान, अच्छे संस्कार, मेहनत, अनुभव, रिश्ते, दूसरों की मदद और अच्छे कर्म। फिर उन्होंने दूसरी कॉलम की ओर इशारा किया और खर्च में क्या लिखेंगे ये बताया। खर्च में लिखेंगे व्यर्थ गया समय, आलस्य, झूठ, गलत संगति, बेवजह का गुस्सा और ऐसे फैसले जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं। निखिल एकदम चुप हो गया। तभी पिताजी ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे खाते में क्या ज्यादा है? निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वो अपने कमरे में गया। पहली बार उसने अपने दिन का हिसाब लगाया। सुबह 2 घंटे मोबाइल में चले गए थे, फिर लगभग 1 घंटा बिना काम के दोस्तों के साथ चला गया। पढ़ाई के लिए तय समय में से भी काफी समय टालने में निकल गया। और निखिल ने सोचा कि अगर मैं पैसे ऐसे ही खर्च करता तो शायद कुछ महीनों में खाली हो जाता, फिर मैं अपना समय इतनी आसानी से क्यों खर्च कर रहा हूँ। अगले दिन उसने पिता की बही से एक खाली पन्ना लिया, ऊपर लिखा, आज का हिसाब। उसने तय किया कि हर रात वो अपने दिन का हिसाब लिखेगा। पहले दिन उसने लिखा, जमा। जमा में लिखा, 2 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा व्यायाम, घर के काम में मदद। खर्च में लिखा, 3 घंटे मोबाइल चलाया, 1 घंटा बेवजह घूमा। अगले दिन उसने मोबाइल का समय कम कर दिया। इसी तरह दोस्तों, तीसरे दिन उसने पढ़ाई का समय बढ़ा दिया। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पास पहले से ज्यादा समय है। असल में समय बड़ा नहीं था, समय की बर्बादी कम हुई थी। कुछ महीने बाद निखिल ने एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत हर किसी के लिए आसान नहीं होती है दोस्तों, और निखिल के लिए भी आसान नहीं थी। कई बार वो असफल हुआ। दोस्तों ने कहा, छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा। लेकिन अब निखिल अपने जीवन के बही खाते को समझ चुका था। उसने अपने पन्ने पर लिखा, असफलता खर्च नहीं, अनुभव के रूप में जमा है। वह फिर से मेहनत करता रहा। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया, निखिल सफल हो गया। उसने सबसे पहले पिता को फोन किया, पिताजी आपका बही खाता काम कर गया। पिताजी हंसे, मेरा नहीं बेटा, तुम्हारा। निखिल घर आया, पिता ने वही पुरानी लाल बही निकाली। निखिल ने कहा, पिताजी आज समझ आया कि पैसा कमाने से पहले इंसान को अपने जीवन का हिसाब समझना चाहिए। तभी पिता ने कहा, और याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं है, सबसे बड़ा लाभ है ऐसा इंसान बनना जिस पर खुद को भी गर्व हो। निखिल ने बही के आखिरी पन्ने पर लिखा, आज से मैं हर दिन अपने जीवन में कुछ अच्छा जमा करूंगा। समय बीतता गया दोस्तों, निखिल नौकरी में आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। हर रात वो खुद से 3 सवाल पूछता था, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसके लिए क्या अच्छा किया, आज मैंने अपना कितना समय सही जगह लगाया।
साथियों धीरे धीरे उसे समझ आया कि जीवन की असली सफलता बैंक खाते में जमा रकम से कहीं बड़ी होती है। अगर किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन समय का उपयोग नहीं करना आता तो उसका जीवन गरीब हो सकता है। अगर किसी के पास साधन कम है लेकिन सीखने की इच्छा, मेहनत और अच्छे कर्म है तो वो भविष्य का सबसे बड़ा धनवान हो सकता है। आज के युवा साथियों को इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि युवा अवसरों के ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया उनके सामने खुली हुई है। शिक्षा के साधन है, तकनीक है, इंटरनेट है।

इन्हीं संभावना है, लेकिन इन सबके बीच सबसे मूल्यवान चीज है समय। पैसा खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, सामान खो जाए तो फिर खरीदा जा सकता है। कई बार असफलता के बाद सफलता भी मिल सकती है, लेकिन जो समय बीत गया श्रोता वो वापस नहीं आता। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे इस कहानी के माध्यम से कि आप भी अपने जीवन का बही खाता बनाना शुरू कर दीजिए। हर दिन खुद से पूछिए कि आज का कितना समय लक्ष्य के लिए लगा और कितना बिना उद्देश्य के चला गया। समय को बचाना केवल घड़ी देखना नहीं, समय को सही दिशा देना ही असली समय प्रबंधन है। हर दिन कुछ नया सीखने का जीवन के खाते में सबसे बड़ा निवेश है। एक नई जानकारी, एक नई कला, एक नई किताब, एक नया अनुभव, ये सभी ऐसी पूंजी है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। इसी के साथ असफलता जीवन के खाते में लाल निशान नहीं है। अगर असफलता हमें अपनी गलती समझाती है तो वो अनुभव बनकर हमारे खाते में जमा होती जाती है। इसलिए श्रोताओं, गिरने से डरना नहीं चाहिए, गिरने के बाद उठना सीखना चाहिए। अच्छे रिश्तों को महत्व दे, गलत आदतों को कम करें, अपने लक्ष्य का हिसाब रखें। युवा चाहे तो हर रात अपनी डायरी में केवल 5 बातें लिख सकते हैं। श्रोताओं, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कौन सी गलती की, आज मैंने कितना समय बचाया, कल मुझे क्या बेहतर करना चाहिए, जैसा कि निखिल ने भी किया था। श्रोताओं, इन 5 सवालों के जवाब धीरे धीरे व्यक्ति को खुद से मिलने लगते हैं। कल्पना कीजिए श्रोताओं कि एक युवा ने लगातार 5 वर्षों तक अपने जीवन का बही खाता संभाला। उसने रोज थोड़ा सीखा, रोज थोड़ा सुधार किया, गलतियों से सबक लिया, समय की कीमत समझी, लोगों का सम्मान किया, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत की। तो 5 साल बाद उसके खाते में केवल नौकरी या पैसा नहीं होगा, उसके पास होगा ज्ञान, अनुभव, आत्मविश्वास, अच्छे रिश्ते, अनुशासन और पहचान। यही असली पूंजी है और यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। श्रोता, इस कहानी का सार है, बही खाता हमें एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात सिखाता है। जिंदगी में हर दिन कुछ न कुछ जमा होता है और कुछ न कुछ खर्च होता है। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना है, सवाल ये है कि हमने क्या जमा किया है। हमने समय जमा किया या बर्बाद किया, ज्ञान जमा किया या बहाने दिया, अनुभव जमा किया या डर, रिश्ते जमा किए या दूरी, अच्छे कर्म जमा किए या केवल शिकायतें। हर युवाओं को समझना होगा कि भविष्य अचानक नहीं बनता, भविष्य हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। आज का 1 घंटा कल की सफलता बन सकता है। श्रोताओं, आज की एक अच्छी आदत आने वाले वर्षों की पहचान बन सकती है, आज की एक छोटी सी कोशिश भविष्य का बड़ा अवसर भी बन सकती है। इसलिए अपने जीवन का बही खाता किसी और के हाथ में मत दीजिए। कल क्या होगा इसका इंतजार भी मत कीजिए, आज क्या जमा करना है ये तय कीजिए, क्योंकि जिंदगी की दुकान में सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं समय है, और इस दुकान का सबसे बड़ा व्यापारी हम स्वयं हैं। एक दिन जब दुनिया की अंतिम गिनती होगी तब शायद कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने रुपए थे, सवाल ये होगा दोस्तों कि तुमने जो समय पाया था उससे क्या बनाया। इसीलिए आज से अपने जीवन की बही खोलिए, उसमें मेहनत जमा कीजिए, ज्ञान जमा कीजिए, अच्छे संस्कार जमा कीजिए, विश्वास जमा कीजिए, मानवता जमा कीजिए और अपने सपनों की दिशा में उठाया गया हर कदम जमा कीजिए। क्योंकि जीवन का असली मुनाफा वो नहीं जो बैंक खाते में दिखाई देता है, बल्कि वो है जो हमारे चरित्र और हमारे कर्मों में दिखाई देता है। इसलिए याद रखिए, जिस युवा ने अपने समय और कर्मों का हिसाब समझ लिया उसने अपने भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी पा ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी बही खाता, और उम्मीद भी करती हूँ कि कहानी और इससे जुड़ी जो भी बातें थी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। क्योंकि अब समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करती हूँ कि जो कहानी आज मैंने आपको सुनाई और जो बातें रही इस कहानी के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर भेजिए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ू जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ू जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर अपने नियत समय पर नई प्यारी कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से नई और प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं। आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही प्यारी सी कहानी अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम सभी एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन कर लें। तो आइए बच्चों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले कहा था कि आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हमारी कहानी का विषय है छोटी चींटी बड़ा हौसला। जी हाँ बच्चों, एक घने जंगल के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की जड़ों के पास चींटियों का एक बड़ा सा बिल था। उस बिल में सैकड़ों चींटियां रहती थी। उनमें से एक छोटी सी चींटी थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही मेहनती, साहसी और समझदार थी। वह हमेशा अपने साथियों से कहती थी बच्चों कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य सबसे जरूरी होते हैं। एक दिन सुबह सुबह चिंकी भोजन की तलाश में निकली। चलते चलते उसे खेत के पास गेहूं का एक बड़ा दाना दिखाई दिया। वह दाना उसके शरीर से कई गुना बड़ा था। चिंकी ने सोचा कि यदि मैं यह दाना अपने बिल तक ले जाऊं, तो कई दिनों तक मेरे साथियों को भोजन मिल जाएगा। उसने दाने को उठाने की कोशिश की, लेकिन दाना बहुत भारी था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दाने को धीरे धीरे धकेलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद वह थक गई, लेकिन उसने आराम नहीं किया बच्चों। फिर से प्रयास करने लगी। रास्ते में एक टिड्डा बैठा हुआ था। उसने चिंकी को संघर्ष करते देखा और हंसते हुए कहा, अरे ओ छोटी चींटी, तुम इतनी सी हो और ये दाना इतना बड़ा है, तुम इसे कभी अपने घर नहीं ले जा पाओगी। अपना समय और मेहनत क्यों बर्बाद कर रही हो? फिर क्या था बच्चों? चिंकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं यह काम कर सकती हूँ या नहीं। टिड्डा उसकी बात सुनकर फिर से हंसने लगा, लेकिन चिंकी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा आ गया। दाना बार बार उसमें फंस जाता था। चिंकी ने कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता ही नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह निराश हो गई। तभी उसे बच्चों अपनी माँ की बात याद आई, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह सोचकर उसने फिर से प्रयास शुरू किया। उसने दाने को अलग दिशा से धकेला और आखिरकार उसे गड्ढे से बाहर निकाल ही लिया। बच्चों, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन चुनौतियाँ अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी दूर चलने पर तेज हवा आने लगी। हवा के कारण दाना बार बार पीछे खिसक जाता। चिंकी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हवा के सामने उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसी समय उसकी कुछ साथी चींटियां वहां से गुजरी। उन्होंने देखा चिंकी को संघर्ष करते हुए, तो उन्होंने पूछा, तुम अकेले इतना बड़ा दाना क्यों ले जा रही हो? चिंकी ने पूरी बात बताई। यह सुनकर सभी चींटियां उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। अब सभी ने मिलकर दाने को उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी पार करना आसान नहीं था। सभी चींटियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सूखे पत्तों और टहनियों की मदद से एक छोटा सा पुल बनाया, फिर सावधानी से दाने को पुल के ऊपर से पार कराया। बच्चों, काफी मेहनत और धैर्य के बाद वे आखिरकार अपने बिल तक पहुंच गईं। पूरे चींटी परिवार ने उनका स्वागत किया। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि इतना बड़ा दाना पूरे परिवार के लिए कई दिनों तक भोजन का प्रबंधन कर सकता था। यह देखकर टिड्डा भी वहां पहुंच गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने शर्मिंदा होकर कहा कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मैंने सीखा कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से असंभव लगने वाले काम भी पूरे किए जा सकते हैं। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, किसी की क्षमता का अंदाजा उसके आकार से नहीं लगाया जाता। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो हार नहीं मानता और वह एक दिन जरूर सफल होता है। जी हाँ बच्चों, उस दिन के बाद से टिड्डे ने भी आलस छोड़ दिया। वह भी मेहनत करने लगा और दूसरों की सहायता करने लगा। जंगल के सभी जीव
चिंकी की लगन और साहस की प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, ये कहानी हमें बहुत ही प्यारी से सीख देती है। यह हमें सीख देती है कि छोटा या बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, सच्ची सफलता के लिए मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है, तभी हमें असली सफलता मिलती है। तो बच्चों, आज से आप भी आलस छोड़िए और रोजाना दिन का कुछ नियम बनाइए, और उस नियम के आधार पर जब हम चलेंगे तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। एक और में प्यारी सी कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए बच्चों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों, मैंने आपको गीत से पहले बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब अगली कहानी का हमारा विषय है जादुई पेंसिल। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वह सोचती थी कि वह अच्छी चित्रकार नहीं है। जब भी वह कोई चित्र बनाती, उसे लगता कि उसके दोस्त के चित्र उससे कहीं बेहतर हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। बच्चों, डिब्बा खोलने पर उसमें एक सुंदर पेंसिल रखी हुई थी। पेंसिल के साथ एक छोटा सा कागज भी था, जिस पर लिखा था, यह जादुई पेंसिल है, इससे जो भी बनाओगे वह सुंदर बन जाएगा। ये सब पढ़कर बच्चों काव्या बहुत खुश हुई। घर पहुंचते ही उसने एक फूल बनाया। चित्र वास्तव में बहुत सचमुच बना। फिर उसने एक पक्षी बनाया, वह भी शानदार बना। अब काव्या को विश्वास हो गया कि पेंसिल जादुई है। वह रोज उससे चित्र बनाने लगी। धीरे धीरे उसके चित्र और भी अच्छे होते गए। कुछ महीनों बाद स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। काव्या ने उसे पेंसिल से एक सुंदर चित्र बनाया और पहला पुरस्कार जीत लिया। पुरस्कार मिलने के बाद वह खुशी खुशी घर आ गई। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन खेलते खेलते वह पेंसिल तोड़ बैठी। बच्चों, काव्या बहुत रोने लगी। उसे लगा कि अब वह कभी अच्छा चित्र नहीं बना पाएगी। अगले दिन चित्रकला शिक्षक ने उसकी उदासी का कारण पूछा। काव्या ने पूरी बात बता दी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानती हो कि उस पेंसिल में कोई जादू नहीं था? काव्या हैरान रह गई। शिक्षक ने कहा, जादू पेंसिल में नहीं, तुम्हारे विश्वास में था। जब तुम्हें लगा कि पेंसिल जादुई है, तब तुमने डरना छोड़ दिया और पूरे मन से चित्र बनाने लगी। अभ्यास करते करते तुम्हारी कला भी निखर गई। यह सुनकर काव्या को बच्चों अपनी गलती समझ में आ गई। उसने फिर से चित्र बनाना शुरू किया और उसके पास कोई जादुई पेंसिल नहीं थी, लेकिन उसके चित्र पहले से भी सुंदर बनने लगे। कुछ वर्षों बाद वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहती कि जादू किसी चीज में नहीं होता, जादू हमारे आत्मविश्वास और मेहनत में होता है। जी हाँ बच्चों, हमारी सफलता का रहस्य किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, मेहनत और निरंतर अभ्यास में छिपा होता है। जी हाँ बच्चों, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके भीतर छुपी होती है, बाहरी साधनों में नहीं। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते और सफलता का श्रेय किसी वस्तु, व्यक्ति या भाग्य को दे देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि निरंतर सीखने की इच्छा, स्वयं पर भरोसा और आगे बढ़ने का साहस ही हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। बच्चों, इंसान अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेता है जब, तो उसके लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और वो अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। तो यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मैंने जो आपको कहानी सुनाई है, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि बच्चों, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलोकी से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में मैंने आपको जो दोनों कहानियाँ सुनाई है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम बात नन्हे दिलोकी, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ बच्चों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम बात नन्हे दिलोकी से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

साथियों, सफलता सिर्फ उस मुकाम का नाम नहीं है जहां हम पहुंचते हैं। सफलता उस पूरे सफर का नाम है जिसमें हम संघर्ष करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए होते हैं।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को कार्यक्रम हमारे मेहमान के माध्यम से एक नई शख्सियत से आप सभी को रूबरू करवाते हैं, तो आज भी कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि मंजिल पाने वाले तो बहुत होते हैं साथियों, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के सफर को दूसरों के लिए प्रेरणा बना देने वाले बहुत कम होते हैं। और ऐसे ही लोगों की कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हौसला बड़ा है तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान की बातचीत भी हमें कुछ ऐसा ही विश्वास दिलाने वाली है साथियों। तो आइए रूबरू होते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान से। सर नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी जानकारी देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम दिलीप रोकड़िया है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा में 5 वर्ष से कार्यरत हूँ।
0: जी जी।
1: मेरा मूल निवास गढ़ी बांसवाड़ा है और बचपन से ही मैं समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों से नजदीक से देखता रहा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही समाज कल्याण विभाग में कार्यरत थे।
0: जी जी।
1: तो उनके कार्यशैली को हमने बचपन से ही आत्मसात कर लिया और एक इनबिल्ट समाज सेवा करने का एक जो मन में था वो होता रहा। पढ़ाई के रूप में हमने पापा के साथ, चूँकि राज्य सरकार में थे, तो प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी थी वो कोटा में हुई है
0: जी।
1: और मिडिल एजुकेशन बीकानेर में हुई, हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन थी वो भरतपुर में और कॉलेज पांसवाड़ा में हुआ। इसलिए हर जगह का अनुभव हमको मिलता रहा और हम अपनी पढ़ाई को समय पर पूर्ण करते रहे। पढ़ाई करने के बाद जैसे परिवार की एक इच्छा थी कि फॉरेन जाए, तो हुए चले गए। तो एमकॉम करने के बाद हुए 3.5 साल रहे, उसके बाद आए और समाज कल्याण विभाग में मौका मिला तो ज्वाइन कर लिया। 87 से निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। 94 में मैं प्रोबेशन ऑफिसर बना, तब से बाल संरक्षण के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ।
0: जी जी।
1: और रिटायरमेंट के बाद सरकार ने फिर एक मौका दिया बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में, तो मैं निरंतर इस कार्य को करता रहा हूँ।
0: बिल्कुल सर, तो ये तो आपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में और अपने बचपन से जुड़ी ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई। हमारे श्रोता साथी ये बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं सर कि आपका बचपन से ही समाज सेवा को लेकर बहुत अधिक रुचि रही थी। आपने जैसा कि बताया है कि आपके जो माताजी और पिताजी जो थे समाज सेवा को लेकर वो कार्य किया करते थे। यहीं सर मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहूंगी, हम देखते हैं कि हम जब किसी सफलता के मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम ढेर सारी समस्याओं का सामना करते हैं, कह सकते हैं ना कि हमारा जो जीवन है वो संघर्षमय जीवन बन जाता है। तो सर क्या आपका जीवन भी कुछ इसी प्रकार से था? क्या आपको भी कुछ चुनौतियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ा था?
1: नहीं, चुनौतियां तो नहीं, हाँ परिश्रम जरूर। जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे उसमें परिश्रम करते रहे।
0: जी जी।
1: बाकी ऐसी कोई चुनौती जैसा कुछ रही नहीं। समय समय पर जो भी, चूंकि माता पिता दोनों आर्थिक रूप से सक्षम थे, इसलिए वो भी स्थिति ऐसी नहीं थी।
0: जी जी।
1: जो हमने चाहा हमें मिला, हम अपने उद्देश्य के लिए जितना हम कर सके, जो मेहनत हमें करनी थी वो हमें ही करनी थी। तो चुनौतियां तो नहीं थी, पर हाँ हमने अपने समय पर अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए, इसकी मुझे खुशी है।
0: बिल्कुल सर। अब यही आप हमें ये बताइए कि ये कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि आपके लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, और उस समय आपने खुद को कैसे संभाला?
1: ऐसा समय नहीं आया कि मेरे को कभी ऐसा लगा हो कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। मेरा जीवन बहुत स्मूथ रहा है।
0: जी जी।
1: मैं अपने जो भी लक्ष्य है और जो भी मेरे क्लाइंट हैं, यानी कि जिन तक मुझे पहुंचना है, वो उन तक मैं आसानी से पहुंच पाया। मेरे साथ काम करने वाले बहुत सरल हृदय से मिले, कभी मेरे को तकलीफ उनकी वजह से नहीं हुई, और मैं भी सोचता हूँ कि मेरी वजह से भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए बहुत सरलता के साथ मेरा अपना जीवन जिया है और मैं अपने लक्ष्य को जहाँ तक मैं सोचता हूँ मैंने अपने प्राप्त किया है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं, और सफलता के मुकाम पर है। यही मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से अब ये जानना चाहूंगी कि कह सकते हैं कि आप समाज सेवा को लेकर काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी आपको कोई पसंदीदा शौक है जो आप पूरा करना चाहते थे?
1: स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, परंतु ऐसा कोई विशेष उपलब्धि जैसे कोई बात नहीं रही।
0: जी,
1: क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, तो वो सिर्फ शौक तक ही सीमित रहा, कभी बहुत ज्यादा उपलब्धियां उसमें रही नहीं। और हाँ, अपने क्षेत्र में हमने काम करके अपने आप को एक नाम कमा लिया। आज हम गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम बाल संरक्षण इकाई में काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और बच्चे हमसे संतुष्ट हैं और हम बच्चों से संतुष्ट हैं।
0: जी जी, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब यहीं आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए कि आज भी आपकी ऐसी कौन सी आदत या मूल्य है जो आपको अपने कार्य से कह सकते हैं कि प्रेम करवाती है या फिर जमीन से जुड़े हुए रखती है?
1: मैं अपने परिवार और ऑफिस को, मैं अपनी प्राथमिकता ऑफिस देता हूँ, मेरे कार्य को देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे ऑफिस में मेरी कार्य पूर्ण है या मेरी इज्जत है, तो परिवार में भी मेरी इज्जत है। तो मैं अपने कार्य को प्राथमिकता देता हूँ। उसके लिए अगर मुझे परिवार के किसी सेक्शन को या किसी कार्य को रोकना पड़ता है तो मैं रोकता हूँ। यही मेरी उपलब्धि, मैं अपने आप को मानता हूँ।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब यही मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि एक अभियान है जो आपके कार्य क्षेत्र में चलाया जा

0: लगता है और कह सकते हैं कि वो काफी प्रसिद्ध भी है कि अनचाहे बच्चे फेंके नहीं बल्कि हमें दें। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: अनचाहे बच्चे फेंके नहीं हमें दे, बहुत आवश्यक है अभियान। हम जब से सर्विस में आए थे तब से देखते थे कि बच्चे झाड़ियों में फेंके जाते हैं।
0: जी जी।
1: बच्चे नालियों में फेंक देते थे, अजन में बच्चे भी फेंक देते थे, तो उसको पीड़ा होती थी। पर फिर ये जैसे जैसे एक्ट में प्रावधान आते गए, नई नई समस्याएं उनका समाधान निकलते गए, तो सरकार ने इस ओर सोचा, हर हॉस्पिटल में पालने लगाए गए, हर जिले में शिशुगृह है उसी शिशुगृह में पालना लगाया गया।
0: जी
1: और
0: जी।
1: एक अभियान के तहत सबको यह समझाया गया कि आप अगर बच्चे को पालने में या क्रेडल में रखेंगे तो वो सुरक्षित स्थान है, क्योंकि जब भी कोई अनचाहा बच्चा फेंकते हैं तो उसके पीछे कई रीजन होते हैं।
0: जी जी।
1: वो रीजन ये होते हैं, समाज में बदनामी, परिवार में बदनामी, उस चीजों से बचने के लिए, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो ऐसे फेंक करके चले जाते थे। तो सरकार ने ये पालने लगा करके और फिर ये मुख्य कह दिया कि भाई आपकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा, कभी आपकी इंक्वायरी नहीं होगी उसके संबंध में अगर उसमें रखा जाता है तो, और वो सुरक्षित स्थान पे रह करके और सुरक्षित जगह पर चला जाएगा।
0: जी जी।
1: जैसे ही कोई बच्चा पालने में आता है तो 2 मिनट के अंदर, विद इन 2 मिनट ट्यूटर बसता है और जो भी स्टाफ है वो जाकर बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लेता है,
0: बिल्कुल
1: विद इन टाइम, और बच्चे को प्रॉपर जो मेडिकल उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो बच्चा सुरक्षित रहता है, बच्चे की हेल्थ पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही कानूनन रूप से जैसे अगर बच्चा फेंके जाता है, कानूनन रूप से वो दोषी हो जाता है।
0: जी
1: अगर
0: जी।
1: वो झाड़ी में या नाली में फेंके गया है तो पुलिस केस होने की संभावना रहती है, पुलिस उसको ये मानती है कि वो हत्या करने का आरोपी है।
0: जी जी।
1: तो उस तरह का केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई होने की संभावना बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस कार्रवाई से मैं अभिभावकों से जो ये इस तरह के काम करते हैं, अनचाहे बच्चे फेंकते हैं, उनके लिए तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई आप निश्चिंत होकर के दें, और वो बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनको बाल कल्याण समिति 2 महीने के अंदर लीगल फ्री करती है।
0: जी जी।
1: और लीगल फ्री करके कारा के माध्यम से गोद देने की कार्रवाई शुरू होती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा।
1: बच्चे सुरक्षित स्थान पर और उनका भविष्य उज्जवल हो ऐसा प्रयास करते हैं।
0: जी सर। तो सर आपने जैसा कि बताया हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी तरीके से, अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यदि कोई परिवार किसी कारणवश बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या ऐसे कानूनी विकल्प हैं जो वो अपना सकते हैं?
1: मतलब कोई परिवार है वो किसी भी कारण से, मतलब बच्चे से नफरत भी करता हो, बच्चे से प्यार भी करता हो और वो पालने योग्य नहीं है, वो बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होकर के 0 से 18 साल तक के बच्चे को 100 रुपए के स्टाम्प पे सरेंडर कर सकता है।
0: जी जी।
1: सरेंडर करना नहीं चाहे तो वो अपनी असमर्थता बताते हुए बच्चे को रख सकता है कि साहब मैं इसको पालने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे तो सरकार बाल कल्याण समिति उसको बाल गृह में रख करके 18 वर्ष तक पाल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और सरेंडर के दिशा में अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो सारे जो परिवार के हक हकूक हैं वो बच्चे के साथ बाल कल्याण समिति के पास आ जाते हैं। बाल कल्याण समिति 6 महीने तक उसका इंतजार करती है कि वापस उसका मन परिवर्तित हो जाए और बच्चे को वापस ले जाना चाहे।
0: जी जी।
1: तो वो ले जा सकता है, 6 महीने बाद उसको लीगल फ्री करके और उसको गोद देने के प्रोसेस में डाल देती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब यहीं आप हमें ये बताइए कि गोद लेने की प्रक्रिया में ऐसे कौन से नियम है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है?
1: गोद लेने के लिए पहले परिवार का सक्षम होना आवश्यक है, परिवार की उम्र का भी एक प्रावधान है, न्यूबॉर्न चाइल्ड अगर वो लेना चाहते हैं
0: जी जी
1: तो 90 साल दोनों की जॉइंट उम्र होनी चाहिए, 110 साल के ऊपर जॉइंट जो 110 साल हो जाए उसके ऊपर बच्चे को नहीं दिया जाता
0: जी,
1: और इन बिटवीन जैसे उनके एज वाइज बच्चे को दिया जाता है, परिवार की आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक स्थिति ये सब देखी जाती है। उसके लिए कारा में ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई जाती है, होम स्टडी रिपोर्ट डीसीपीयू के माध्यम से होम स्टडी रिपोर्ट बनाई जाती है
0: जी सर।
1: और सारी चीज देखने के पश्चात जब फैमिली फिट घोषित हो जाती है तो बच्चे को गोद देने के प्रोसेस में लाया जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी तरीके से ये बता दिया है किस प्रकार से जो अनचाहे बच्चे फेंके नहीं हमें दे, ये जो अभियान है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब यहीं अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि कोई भी नवजात शिशु असुरक्षित न रहे?
1: मैं तो सभी को, आपके श्रोतागण को ये निवेदन करना चाहूंगा, बच्चे भगवान की देन है, वो चाहे अनचाहे हो चाहे हो। बच्चे अनचाहे उस अभिभावक के प्रेम की निशानी या गलती की निशानी जो भी है वो है, तो बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें। बच्चों को सुरक्षित रखें और सुरक्षित हाथों में दें, अपने ज्ञान की वृद्धि करें, अपने नियर से भी जो भी समाज बाल अधिकारिता विभाग के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क करें और बच्चे को सुरक्षित हाथों में पहुंचा दे। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बच्चों के प्रति संवेदना होगी और हम सब मिलकर के स्वस्थ बच्चे और शिक्षित बच्चे बना सके, इसी कामना के साथ मैं उनको यही राय देना चाहूंगा कि आप इधर उधर फेंकने के बजाय सुरक्षित हाथों में दें।
0: बिल्कुल सर, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपना कीमती अमूल्य समय हमारे श्रोता साथियों को दिया। धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद वागड़ रेडियो।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे मेहमान जुड़े हुए थे और उनके जीवन परिचय से हम रूबरू हो पाए हैं, साथियों जैसा कि हमने ढेर सारी बातों के माध्यम से ये जाना कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि अनगिनत प्रयास, अनुशासन और खुद पर विश्वास छिपा हुआ होता है। दोस्तों, जब इंसान गिरकर भी उठना सीख लेता है और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे भी सीख लेना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मेहमान की बातचीत से हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं। अब जैसा कि साथियों, कार्यक्रम में बातें तो हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारे मेहमान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारे मेहमान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई शख्सियत के साथ में कार्यक्रम हमारे मेहमान में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी साथी कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
0: साथियों, सत्य की राह दिखलाई, अहिंसा का संदेश दिया। बापू ने भारत को आजादी का नया परिवेश दिया। सादा जीवन, ऊंचे विचार, यही उनकी पहचान है। गांधी जी के आदर्शों से बने देश महान है।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हम जान रहे थे सबकी गांधी नारी प्रकरण के बारे में, और जैसा कि हमने जाना था अंजलि जी कि गांधी जी ने मनु बहन की परीक्षा ली थी।
1: बिल्कुल,
0: अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाए तो साथियों, इसी यात्रा में जब गांधी जी ने सभी साथियों को दो दो की टोली में गाँव में जाने को कहा, तब उस टोली में एक बंगाली भाषा जानने वाला हो ऐसी व्यवस्था की गई थी।
1: बिल्कुल,
0: मालती देवी चौधरी जब यात्रा में शामिल होने के लिए आई अंजलि जी, तब गांधी जी ने उन्हें अकेले ही जाने को कहा, क्योंकि उनकी मातृभाषा बंगला थी, उनको दो भाषी की क्या जरूरत है। गांधी जी का रास्ता लोगों पर विश्वास रख कर उन्हें विश्वास पात्र बनाने का था। साथियों, इसी भांति उन्होंने अनेक पुरुषों को उन कामों को करने का प्रशिक्षण दिया जो स्त्रियों के माने जाते थे। कईयों को खाना पकाना सिखाया था, तो कईयों को बीमारों की सेवा टहल करना और बालकों की देखभाल करना सिखाया था अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, गांधी जी को स्त्रियों द्वारा किए जाने वाली सेवा और किसी भी काम को सूक्ष्मता व जी लगाकर करने की आदत के प्रति बहुत आदर व श्रद्धा थी। चंपारण में किसानों की तकलीफ का पता लगाकर वे दूसरे स्थानों पर गए थे।
0: बिल्कुल,
1: वहाँ के गाँव में रचनात्मक काम करने के लिए जिन्हें छोड़ गए थे उनमें महिलाएं अधिक थी। उनमें कस्तूरबा, मणि बहन पारेख और दुर्गा भाई देसाई जैसी अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी गांधी जी ने उनको गांवों की शालाएं चलाने का सुझाव दिया।
0: बिल्कुल,
1: शाला का काम सफाई से शुरू होता था। कुएं के आसपास की कीचड़ भरी जमीन पर सूखी माटी डालकर वहां मच्छरों के अंडे पनपने वाले गड्ढों को भर देना महिलाओं के निमित्त पहला प्रधान पाठ था। बालकों को नहलाना धुलाना, उनके माथे से जुए निकालना, उनके नाखून काटना, ये सभी काम जो है जब कस्तूरबा और उनकी सहेलियों ने किए होंगे तब मोतिहारी के आसपास के ग्रामवासियों को तो उनसे आश्चर्य हुआ होगा।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने तुरंत दुर्गा बहन को पंडित कहकर बुलाना शुरू कर दिया। महादेव भाई ने उसके बाद अंत तक दुर्गा बहन को इस नाम से संबोधित वे करते थे। कोठार की व्यवस्था संभालना थोड़ा मुश्किल काम माना जाता था, इसकी बजाय अधिक मुश्किल काम कदाचित सामुदायिक रसोई के संचालन का होगा।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी के सुझाव से एक महीने तक कोठार का पूरा कामकाज आश्रम की बहनों को सौंपा गया। सचमुच कशिश, उस महीने कोठार का हिसाब बहुत सरलता से पूरा हुआ। गांधी जी का महिलाओं के प्रति रखा हुआ विश्वास सत्य सिद्ध हुआ।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों महिलाओं और महिलाओं की समस्याओं के बाबत गांधी जी के विचार उनकी सत्य अहिंसा विषयक शोध से ही उत्पन्न हुए हैं। सत्य उन्हें स्त्री पुरुष के सह नागरिकत्व के विचार तक ले गया है।
1: बिल्कुल,
0: और अहिंसा उन्हें आत्मा की शक्ति यानी कि सत्याग्रह शक्ति तक ले गया है। कह सकते हैं अंजलि जी के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में गांधी जी सत्य अहिंसा के क्रियान्वयन को ध्रुव तारा मानते थे। इस विषय के जीवन सूत्र गांधी जी को अपनी हिये की सूझ, स्वानुभव और चिंतन मनन से प्राप्त हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथियों गांधी जी के मन में स्त्रियों की शक्ति के विषय में अगाध विश्वास था। उन्हें अबला कहना उन्हें महिलाओं का अपमान करने के बराबर लगता था।
1: बिल्कुल,
0: बल शब्द यदि पशु बल जैसा अर्थ किया जाए तो अपनी शारीरिक शक्ति के कारण पुरुष और स्त्री की तुलना में अवश्य सबल कहलाएगा। बल का अर्थ नैतिक बल किया जाए तो स्त्री पुरुष की तुलना में कम बलवती सिद्ध नहीं होगी।
1: जी जी,
0: उसकी सहन शक्ति, उसकी त्याग परायण व्रति, उसकी हिम्मत देखकर गांधी जी उसे अबला मानने को तैयार ही नहीं थे अंजलि जी। वे मानते थे कि यदि स्त्री का पुरुष ने शोषण न किया होता, यानी कि स्त्री भोग में पड़ी पुरुष के वश में न होती, तो स्त्री अपनी अनंत शक्ति संसार को बता सकी होती।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी ने कहा है कि यदि स्त्री पुरुष की सहचारिणी है तो स्त्री की समस्त प्रवृत्ति को सूक्ष्मता से जानने का पुरुष को अधिकार है। उतना ही अधिकार स्त्री को भी पुरुष की तमाम प्रवृत्तियों के बारे में जानने का है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है नारी प्रकरण को लेकर, ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना सबके गांधी नारी प्रकरण में कि किस तरीके से गांधी जी ने कहा कि यदि स्त्री पुरुष के सर चढ़नी है तो स्त्री के समस्त प्रवृत्ति को सूक्ष्मता से जानने का पुरुष को अधिकार है, उतना ही अधिकार स्त्री को पुरुष की तमाम प्रवृत्तियों के बारे में जानने का है। कायदे कानून बनाने वाले पुरुष ने तथा कथित अबला जाति पर जो अंधपतन लादा है उसके लिए उसे भयंकर दंड भोगना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: पुरुष के जाल से मुक्त होकर कशिश स्त्री पुरुष द्वारा निर्मित कायदे कानून के खिलाफ बगावत छेड़ेगी, तब अहिंसक होते हुए भी उनका विद्रोह कम प्रभावी नहीं होगा। अपनी रक्षा के लिए स्त्रियां पुरुषों पर आधारित क्यों रहे, उनको केवल अपनी शक्ति चरित्र की शुद्धता और ईश्वर पर ही निर्भरता रखनी चाहिए। पुरुष जाति ने स्वयं को अनेक प्रकार के अनिष्टों हेतु उत्तरदायी बनाया है, उन सब में नारी जाति का उसने जो दुरुपयोग किया है उसके जितना निष्कर्ष या पाशवी अनिष्ट कोई और नहीं। स्त्री अधिक श्रेष्ठ है, आज भी वह स्वयं बलिदान, तितिशा, नम्रता, श्रद्धा और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। गांधी जी ने लिखा है श्रोता साथियों कि मेरा अपना अभिप्राय तो ऐसा है कि बुनियादी तौर पर पुरुष की भांति स्त्री भी एक ही मानव वंश है, वैसे ही इसकी समस्या भी अनंत एक ही होनी चाहिए। दोनों में एक ही आत्मा निवास करती है, दोनों एक ही जीवन जीते हैं, एक ही प्रकार की शब्द स्पर्शादि भावनाएं अनुभव करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सक्रिय सहायता के बिना जी नहीं सकते। स्त्री अहिंसा की साक्षात प्रतिमा है। अहिंसा का अर्थ है कशिश निर्बधी प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें पुनः कष्ट सहन की असीम शक्ति। पुरुष की जन्मदात्री के सिवाय ऐसा अपरंपार कष्ट सहन की शक्ति अधिक से अधिक संसार में और कौन बता सकता है। श्रोता साथियों, स्त्रियों के अधिकार के संबंध में जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मेरे मतानुसार कानून को स्त्री और पुरुष के बीच किसी भी तरह की असमानता नहीं रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: पुत्र और पुत्री के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, कहा जा सकता है कि कानून बनाने का कार्य अधिकांशतः पुरुषों के हाथ में रहता है। उनके द्वारा सदैव विवेक दृष्टि का उपयोग करना दिखने में नहीं आता। वर्तमान में तो स्त्री जाति की अवनति दूर करने में महाभागीरथ प्रयत्न तो हिंदू धर्म शास्त्र में ही स्त्रियों के विषय में विद्यमान आलेखों में दूर करने का है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आज महिलाएं राजनीति में बहुत कम भाग लेती हैं। जो लेती हैं वे स्वतंत्र रूप से नहीं सोचती, जैसा उनके माता पिता या पति कहते हैं वे वैसा ही करती हैं। अपनी पराधीनता देखकर स्त्रियों के खास अधिकार की दलील पर दृष्टिपात करती हैं, और ऐसा करने के बजाय महिलाएं सभी बहनों के मताधिकार हेतु पंजीकृत करें, उनको व्यवहारिक शिक्षण प्रदान करें या फिर करवाएं। अंजलि जी, उनको स्वतंत्र विचार करने योग्य बनाएं, जात पात के जंजाल से छूटें और पुरुष उनकी शक्ति एवं त्याग को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाएं, ऐसा समय लेकर आएं।
0: बिल्कुल,
1: स्त्रियों को ऐसा मानने की कतई जरूरत नहीं है कि हम पुरुषों के अधीन हैं या फिर हम निम्न दर्जे के हैं। स्त्रियों पर जो जो गलत एवं अनिष्टकारी अंकुश है उन सबके खिलाफ विद्रोह करने के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ। कोई भी अंकुश तभी लाभदायी रहता है जब वह स्वेच्छा से हो और प्रसन्नता से स्वीकार किया जाए।
0: बिल्कुल,
1: सविनय अवज्ञा से किसी को हानि संभव नहीं है। उपद्रव करने की शुद्धता और समझदारी के साथ विरोध, ये दो सविनय अवज्ञा के मुख्य लक्षण हैं। अंजलि जी,
0: बिल्कुल यही बात करें तो श्रोता साथियों, पुरुषों को स्त्रियों की शील बाबत चिंता व्यक्त करते देखकर गांधी जी कहते हैं कि स्त्रियों की शील संबंधित यह रुग्ण चिंता किस लिए, पुरुषों की शील के बारे में क्या स्त्रियों को कुछ कहने का अधिकार है। स्त्रियों की शील रक्षा के लिए नियम बनाने का अधिकार पुरुषों को अपना क्यों मान लेना चाहिए। शील बाहर से लादा नहीं जा सकता, यह तो आंतरिक विकास का और व्यक्तिगत साधन का विषय है। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार या बलात्कार के बारे में गांधी जी से अनेक बार प्रश्न पूछे जाते। इस बाबत गांधी जी के विचार हैं कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग हो ही नहीं सकता। वह डर के मारे वश में हो जाए अथवा अपनी पवित्रता का सामर्थ्य उसे न लगे, तभी वह राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य का शिकार हो जाती है।
1: जी
0: यदि
1: हाँ।
0: उसका शारीरिक बल बहुत अधिक होगा तो उसकी पवित्रता वह उसे वश में करे उससे पहले उसे मरने का बल प्रदान करेगी। सीता रावण के वशीभूत नहीं हुई तो वह उसकी तरफ विषैली दृष्टि भी नहीं डाल सका।
1: जी जी,
0: गांधी जी बहनों को यह सीख देते हैं कि वे सीता जैसी हिम्मत विकसित करें, इसका नतीजा यह आएगा कि वे निर्भय हो जाएंगी। यह शिक्षण माता पिता और पति को देना है। ईश्वर के प्रति आस्था पैदा करने से यह शिक्षण मिलता रहता है। जिसमें ऐसी आस्था आ गई कशिश, वे सब तरह के भय से मुक्त हैं। इस प्रकार गांधी जी की दृष्टि से स्त्री के शील की रक्षा का मुख्य साधन उनकी निर्भयता है। निर्भयता उसे अनंत ईश्वर की आस्था से ही प्राप्त होती है।
1: जी जी।
0: वे मानते हैं कि यदि स्त्री की स्वयं मरने की तैयारी हो तो उस पर कोई जुल्म नहीं ढा सकता। कारण यह कि जब तक स्त्री मन से ढीली नहीं पड़ जाती तब तक उस पर जुल्म हो ही नहीं सकता। परंतु साथ ही साथ गांधी जी यूँ भी कहते हैं कि स्त्री पर हमला हो उस समय वह हिंसा अहिंसक का विचार न करे। उस समय उसका परम धर्म है स्वरक्षा। जो साधन उस समय उसे सूझे उसका प्रयोग करके वह अपनी पवित्रता की रक्षा करे। ईश्वर ने नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं, जो बल दिया है उसका उपयोग वह करेगी तो ऐसा करते हुए वह मर जाएगी। अहिंसक पुरुष अथवा स्त्री स्वयं अपनी अथवा अपने स्त्री वर्ग की इज्जत का बचाव करते हुए मृत्यु को गले लगाए तो यह श्रेष्ठतम बहादुरी होगी।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से नारी प्रकरण को लेकर बातचीत कर रहे थे और देख रहे हैं कि ये बातें हमारी पूरी हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन में इसी प्रकरण से जुड़ी और ढेर सारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार साथी। दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
1: तू अणि माटी में जन्मी हूँ, अणि माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया, बीज बोया, मैं फसल बहाई वो विश्रम करो। तो पसे बाप दादा ने जन्म माते मारो अधिकार केम नती। सूरी जन्म तकीस हकदार है, कानूने आ वात मानी है। ना पन्या पूटे एनो हक को ले सके, ना रिवाज अन सच ने बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक इन्हें पहचान।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे के आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है। तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध ज पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदु कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
0: नमस्कार। आओ भाइयों और बहनों सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
4: नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी साथियों कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हम रसोई की खुशबू के साथ जो दादी नानी के अनुभव होते हैं उसकी मिठास को लेकर हाजिर होते हैं। श्रोता साथियों व्रत का दिन हो तो अक्सर मन में सवाल आता है कि ऐसा क्या बनाएं जो व्रत में खाया भी जा सके, स्वादिष्ट भी हो, शरीर को दिन भर ऊर्जा भी देता रहे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण चल ही रहा है और बहुत से जो लोग हैं वो पूरा महीना व्रत रखते हैं। ऐसे में इन दिनों में जब हम व्रत रखते हैं तो शरीर में कमजोरी भी आ जाती है और बहुत सारी चीजें हमें महसूस होने लगती है। ऐसे में अगर व्रत के साथ साथ हम खाने पीने की कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखें तो हमारा जो व्रत है वो सफल हो जाता है। दादी माँ कहती है श्रोता साथियों कि व्रत का मतलब केवल पेट खाली रखना नहीं बल्कि अपनी आस्था के साथ शरीर का भी ध्यान रखना है। इसलिए आज की रसोई में हम लेकर आए हैं दो ऐसी ही आसान रेसिपी जिन्हें व्रत के दौरान आप सभी लोग बनाकर खा सकते हैं। आज हम बात करेंगे शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के पौष्टिक लड्डू की और इसी के साथ राजगिरे के आटे की स्वादिष्ट रोटी की। तो चलिए बोलते हैं दादी माँ की रसोई का पिटारा और शुरू करते हैं आज की स्वादिष्ट तैयारी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि तैयारी शुरू करने से पहले हम सभी एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन अवश्य करेंगे क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के पौष्टिक लड्डू हम कैसे बनाएं, साथ ही राजगिरे के आटे की स्वादिष्ट रोटी के बारे में। जी हाँ श्रोता साथियों, शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए होगी, तो आप जल्दी से पेन और कॉपी ले लीजिए और उसे फटाफट से लिख लीजिए। हमें शकरकंद चाहिए 2 से 3 मध्यम आकार के, बादाम चाहिए 8 से 10, काजू चाहिए 8 से 10, अखरोट चाहिए 3 से 4, किशमिश चाहिए हमें 1 से 2 बड़े चम्मच, नारियल का बूरा चाहिए 2 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर चाहिए 1/2 चम्मच, घी चाहिए 1 से 2 चम्मच, गुड़ या व्रत में अनुमत जो मिठास हमें चाहिए स्वाद अनुसार वो हमें चाहिए होगी। सजाने के लिए थोड़ा सा नारियल का बूरा और कटे हुए मेवे हम ले सकते हैं। श्रोता साथियों, व्रत के नियम अलग अलग परिवार और परंपराओं में अलग हो सकते हैं, इसलिए सामग्री अपने व्रत के नियमों के अनुसार आप रख सकते हैं। तो ये सामग्री जब हम ले लेते हैं, उसके बाद अब बात आती है श्रोता साथियों कि आखिरकार इसे बनाएं कैसे। तो सबसे पहले शकरकंद को हमें अच्छी तरीके से धोकर उबाल लेना है। ठंडा होने के बाद उसके छिलके उतार कर उसे अच्छी तरह मेश कर लें। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर बादाम, काजू और अखरोट को हल्का सा भून लें। इन्हें ठंडा करके दरदरा पीस लें। अब उसी कढ़ाई में मेश किया हुआ शकरकंद डालकर कुछ मिनट श्रोता साथियों हमें धीमी आंच पर भून लेना है। हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका अतिरिक्त पानी जो है वो सूखने न लगे। जब वो सूख जाए तो उसमें पीसे हुए मेवे, किशमिश और नारियल का बूरा डालकर हमें उसे चलाना है। अब स्वाद के अनुसार गुड़ और व्रत में जो भी हम मिठाई के तौर पर जैसे कि शक्कर हम खाते हैं तो हमें वो ले लेनी है, और आखिर में इलायची पाउडर डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मिला लेना है। मिश्रण छोटा साथियों थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथों पर हल्का घी लगाकर छोटे छोटे गोल लड्डू बना लें। ऊपर से नारियल का बूरा, कटे हुए मेवे लगाकर सजाएं। तो इस तरीके से व्रत के लिए तैयार हैं हमारे स्वादिष्ट से शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। जी हाँ श्रोता साथियों, शकरकंद ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, इसलिए व्रत में लंबे समय तक काम करने के लिए इससे हमें ऊर्जा मिल सकती है। इसमें फाइबर होता है जो कि पेट को भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद करता है। बादाम, अखरोट, काजू ये सब वसा और प्रोटीन से मिलते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ड्राई फ्रूट्स लड्डू को पौष्टिक बनाने के साथ साथ स्वाद भी बनाते हैं। घर पर बनाए लड्डू में सामग्री की मात्रा अपने स्वाद और जरूरत के अनुसार नियंत्रित भी की जा सकती है। इसलिए दोस्तों, व्रत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि खूब ज्यादा तला भुना खाया जाए। थोड़ी मात्रा में पौष्टिक खाना और पर्याप्त पानी लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये हमने जाना शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के बारे में। आगे हम जानेंगे राजगिरे के आटे की स्वादिष्ट रोटी हम कैसे बनाएं। बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में हम बीच बीच में मनोरंजन करते हैं गीतों के साथ में, तो क्यों ना दोस्तों आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत ही पौष्टिक व्रत के नाश्ते के बारे में जाना कि किस तरीके से हम शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना सकते हैं, यही कुछ मीठे के साथ तीखा होना भी जरूरी है, क्योंकि व्रत जब हमारा होता है तो हमें बहुत सी बार चटपटा खाने का मन करता है। ऐसे में राजगिरे के आटे की मसाले वाली रोटी हम बना सकते हैं। इसके लिए श्रोता साथियों, हमें सामग्री चाहिए: राजगिरे का आटा 1 कप, उबला हुआ आलू 1 बड़ा, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची 1 बारीक कटी हुई, हरा धनिया 2 बड़े चम्मच, जीरा आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर हमें ले लेना है, अदरक आधा चम्मच बारीक कटी हुई, घी सेकने के लिए और गुनगुना पानी। श्रोता साथियों, व्रत के दौरान मसाले और सामग्री जिस तरीके से हमें चाहिए होते हैं उसी अनुसार हमें लेने हैं। इनमें से कोई चीज अगर हम व्रत में नहीं खाते हैं तो वो हमें हटा देनी है। अब इसे बनाने की विधि के बारे में जाने तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में राजगिरे का आटा हमें लेना है। इसमें उबला हुआ जो आलू है उसे अच्छी तरह मैश करके डालना है। अब इसमें सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया डाल देना है। सारी सामग्री को हाथों से श्रोता साथियों अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। राजगिरे का आटा गेहूं के आटे की तरह आसानी से नहीं बनता है श्रोता साथियों, इसलिए उबला हुआ आलू रोटी को बांधने में मदद करता है। अब आटे की छोटी लोई लें, इसे 2 प्लास्टिक शीट या गीले कपड़े के बीच रख कर हाथ से धीरे धीरे दबाते हुए रोटी का आकार दें। तवा गर्म करें और रोटी को सावधानी से तवे पर डालें। एक तरफ सिक जाए तो धीरे से पलटें। दोनों तरफ थोड़ा सा घी लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें। इस तरीके से गर्मा गर्म मसालेदार राजगिरे की रोटी तैयार हो जाती है। इसे व्रत में हम खा सकते हैं और इसके लिए हम दही, धनिया, मूंगफली की चटनी भी बना सकते हैं और उसके साथ भी खा सकते हैं। श्रोता साथियों, राजगिरा प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। आलू जो है वो रोटी को ऊर्जा और नरमी देता है। मेवा या दही के साथ खाने पर भोजन को और पौष्टिक बनाया जा सकता है। घर पर बना भोजन जो है उसमें हमें मसाले और तेल की जो मात्रा है उसका ध्यान हम रखते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि राजगिरे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर रोटी बार बार टूट रही है तो थोड़ा और उबला आलू मिलाएं। लोई को सीधे बेलने के बजाय हथेली से दबाकर रोटी का आकार हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये राजगिरे की मसालेदार रोटी भी हम व्रत में बनाकर खाएं। तो श्रोता साथियों, देखा आपने, व्रत का खाना भी स्वादिष्ट, आसान और पौष्टिक हो सकता है। शकरकंद से बने लड्डू मीठे की इच्छा पूरी करेंगे और राजगिरे की रोटी पेट को भरने के साथ भोजन में विविधता भी लाएगी। लेकिन दादी माँ एक बात हमेशा कहती है कि व्रत में पकवान कम, संतुलन ज्यादा जरूरी है। इसलिए तला भुना भोजन बार बार खाने के बजाय उबली भुनी और कम तेल वाली चीजों को प्राथमिकता दें। शरीर को पानी की जरूरत होती है, इसलिए अपनी स्वास्थ्य स्थिति और व्रत के नियमों के अनुसार पर्याप्त तरण लेते रहें। आज की दादी माँ की रसोई में हमने सीखी 2 आसान सी रेसिपी: शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और राजगिरे के आटे की मसालेदार रोटी। आप भी इन्हें अपने घर में बनाइए और बताइए कि दादी माँ की आज की कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। फिर मिलेंगे श्रोता साथियों रसोई की एक नई खुशबू और दादी माँ के एक नए नुस्खे के साथ में। तब तक याद रखिए, स्वाद वही अच्छा जो सेहत का भी रखे ख्याल। दादी माँ की रसोई में हर निवाला बने कमाल।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा

हम और हमारा संविधान। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने हमारे श्रोता साथियों से बातचीत की थी महात्मा गांधी और भारतीय संविधान में, हमने जाना था कि कैसी व्यवस्था चाहते हैं गांधी जी। इसी के साथ हम जान पाए थे पंचायत, तालुका, जिला पंचायत और ढेर सारी बातों के बारे में। यही आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है गांधी जी और समानुभूति के बारे में।
1: बिल्कुल अंजलि, गांधी जी और समानुभूति के बारे में अगर हम बात करें अंजलि, तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक बड़ी बहस इस बात को लेकर थी कि भारत में जाति व्यवस्था और छुआछूत को कैसे समाप्त किया जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: अंबेडकर का मानना था कि कानून व्यवस्था, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में विशेष अधिकारों से जाति व्यवस्था को तोड़ा जा सकता है। वे कहते थे कि इसके बिना समाज की ऊंची जातियां कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म न होने देगी।
0: जी बिल्कुल।
1: वहीं महात्मा गांधी समानुभूति के प्रयोग और अभ्यास से भारतीय मानस में बदलाव की संभावना देखते थे। उनका मानना था कि जब ऊंची जातियों के लोग ये महसूस करने लगेंगे कि जाति व्यवस्था और छुआछूत कितना घृणित व्यवहार है, ये धर्म नहीं बरबर अधर्म है, तब वे खुद इस व्यवस्था को तोड़ देंगे।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी को आधुनिक विश्व में सहानुभूति का व्यवहारिक प्रतिनिधि मानने के कुछ कारण हैं। समानुभूति का मतलब है किसी भी विषय, स्थिति, समस्या, असमस्या को उसी व्यक्ति के मनोभाव से महसूस करना जो वह महसूस कर रहा है, उसमें अन्य व्यक्ति का अनुभव या पूर्वाग्रह या दया भाव का नहीं होता है। समानुभूति की स्थिति में हम दो व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, वहाँ दया भाव का बेचारापन नहीं होता है, वहाँ हम एक ही होते हैं। मदद पाने वाला या उस स्थिति को जीने वाला भी वही और मदद करने वाला भी वही होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि समानुभूति के अभ्यास में कुछ व्यवहार महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें हम महात्मा गांधी जी के जीवन व्यवहार से भी जोड़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: मसलन सुनना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। महात्मा गांधी जी वस्तुतः संवाद में शामिल होते थे। उनके संवाद में किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी बात पूरी तरह से कहने और उसकी व्याख्या का पूरा स्थान मौजूद रहा।
0: जी जी।
1: उन्होंने असहमति को हमेशा पूरा सम्मान दिया। महात्मा गांधी जी ने हमेशा संवाद में यह स्थापित किया कि सहमत असहमत होना अपने स्थान पर संभव है, किंतु उपेक्षा करना या खारिज करने का भाव प्रदर्शित करना नैतिक व्यवहार नहीं है।
0: जी।
1: महात्मा गांधी जी किसी के बारे में फौरी तौर पर राय बनाने से बचते थे। वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समग्रता में समझकर ही उसके बारे में राय कायम करते थे।
0: जी जी।
1: यही वजह है साथियों कि गांधी जी हम सभी के जीवन में शामिल है। तमाम उदाहरण ऐसे भी हैं जहां गांधी जी ने किसी को सुझाव देने से पहले उस बात को खुद पर लागू किया और इसके बाद ही उसका सुझाव दिया।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था कि अपने जीवन का हर काम खुद करने की तत्परता वे रखते थे और काम किया जाए। बीमार व्यक्ति की सेवा के लिए वे किसी को निर्देश नहीं देते थे, वे खुद सेवा करते थे। मानव मल ढोने के विषय पर उन्होंने खुद मल साफ करना शुरू किया, जिससे बहुत से जो लोग हैं वो सहमत नहीं थे।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयास करूँगा जो भारत को हर प्रकार की गुलामी, परावलंबन से मुक्त कर दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा।
1: जी हाँ।
0: उनमें महिलाओं को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। हम न किसी का शोषण करेंगे, न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे। मैं देसी और विदेशी के फर्क से भी नफरत करता हूँ। यह है मेरे सपनों का भारत। इससे भिन्न किसी चीज से संतोष नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
0: यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा 10 सितंबर 1931 में कहे गए थे।
1: बिल्कुल अंजलि। तो अंजलि, जैसा कि हमने बात की महात्मा गांधी और भारतीय संविधान को लेकर, हमने जाना गांधी और समानुभूति को लेकर, आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे संविधान और आदिवासी को लेकर। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि गीत से पहले हमने गांधी और समानुभूति के बारे में जाना था,
1: जी जी,
0: यही हम जानते हैं संविधान और आदिवासी के बारे में।
1: श्रोता साथियों, देश के आदिवासियों यानी कि मूल निवासियों की यह शिकायत रही है कि कथित मुख्य धारा के समाज ने उन्हें कभी वह अधिकार प्रदान नहीं किया जिसके वे वास्तव में अधिकार रहे हैं। राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनके नेतृत्व और भूमिका को वह तवज्जो नहीं मिली जिसके वे हकदार थे।
0: जी हाँ,
1: अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से लेकर संविधान समस्त भारतीय शासन तक आदिवासियों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं आया।
0: बिल्कुल,
1: संविधान सभा की बहसों में देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को लेकर अलग अलग सदस्यों का नजरिया जानना सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन बहसों में भी आदिवासी अस्मिता का सवाल अत्यंत मुखर ढंग से उठा था।
0: बिल्कुल,
1: पांचवी और छठी अनुसूची के प्रावधान इसी सोच चिंतित बहसों का नतीजा है।
0: और अंजलि, आदिवासी अस्मिता का सवाल यानी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक धारा जिसे एक बड़ा तबका मुख्य धारा भी कहते हैं,
1: जी जी,
0: उसमें आदिवासी समुदाय या अनुसूचित जनजाति समुदाय व्यापक रूप से उपेक्षा का शिकार रहा है। वहीं एक तथ्य यह भी है कि ऐतिहासिक और आदिवासी समुदाय अपनी अस्मिता की रक्षा करने तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई में लगातार सक्रिय बने रहे।
1: जी बिल्कुल,
0: आदिवासी समुदायों ने कम से कम 10 बड़े विद्रोह किए जो या तो उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए आवश्यक थे या फिर उपनिवेशवाद के विरुद्ध थे।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय ने पूरी आजादी और अपनी अस्मिता के सवाल पर कभी कोई मध्यमार्गी स्थिति नहीं अपनाई। उन्होंने इन मुद्दों पर कभी कोई समझौता नहीं किया। सच तो यही है कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और आर्यों के भारत आगमन से बहुत पहले से वे यहाँ रह रहे हैं। यही एक समुदाय है जिसने कभी भी पूर्ण आजादी और अस्मिता के सवाल पर न तो कोई मध्य मार्ग अपनाया न ही कोई समझौता किया। आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और आर्यों के भारत आने से पहले से ही यहाँ निवासरत हैं। आदिवासियों या अनुसूचित जनजाति समाज के सामने वास्तव में अपनी सामाजिक संस्कृति अस्मिता को बचाने का प्रश्न खड़ा है, जिसे अक्सर उनकी आर्थिक गरीबी में ऐसा खोल दिया जाता है कि वास्तविक प्रश्न छुप जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और यही बात करें मुख्य धारा और मूल पहचान को लेकर, तो अक्सर मीडिया में राजनेताओं के मुख से तथा अन्य माध्यमों से हमें सुनने को मिलता है कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना है। आखिर क्या है ये मुख्य धारा? साथ ही मुख्य धारा है जातिवादी, पूंजी संग्रह केंद्रित और संसाधनों के अधिकतम शोषण की परिभाषा से पैदा होने वाली जीवन शैली और नीतियाँ। समाज ने आदिवासियों को उनकी मूल पहचान के साथ अपनाने के बजाय उनके सामने हमेशा अपनी पहचान त्यागने की शर्त रखी है। यही वजह है कि समुदाय हमेशा हिचकिचाहट में रहा। इस समाज ने संभवतः सबसे पहले उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था की मुखालफत की, क्योंकि इनकी रुचि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके मुनाफा कमाने में कभी नहीं रही। ये हमेशा से मानते रहे कि जंगल जमीन का व्यापार भी नहीं होना चाहिए और निजी संपत्ति का संग्रह भी अनुचित है। इसीलिए उन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही ब्रिटिश दखल का विरोध करना शुरू कर दिया। अन्य समुदाय लगभग 100 सालों तक सक्रिय नहीं हुए और ब्रिटिश व्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते रहे।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ बात करें संघर्ष के इतिहास की, तो श्रोता साथियों, उपनिवेश कालीन भारत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इनके संघर्ष को वाजिब स्थान नहीं मिला। आदिवासी आंदोलनकारियों ने एक अलग ही वैचारिक आध्यात्मिक धरातल का विद्रोह किए थे। वे कभी भी भारत की जाति वर्ण संप्रदाय आधारित व्यवस्था से अपना स्वाभाविक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। इसके बाद राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्हें उस तरह का नेतृत्व और पहचान नहीं मिली जितनी की अन्य समुदाय को हासिल हुई।
0: बिल्कुल,
1: भारत के संविधान ने उन्हें उनकी मूल पहचान लौटाने की कोशिश की और यह कितनी कड़वी बहस है यह संविधान सभा के दस्तावेज से पता भी चलता है। भारत के संविधान ने आदिवासियों यानी कि मूल निवासियों के साथ किस हद तक न्याय किया है यह जानने से पहले जरूरी है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को जाना चाहे। इसके बिना बात की चर्चा के कोई मायने नहीं रहेंगे।
0: जी हाँ,
1: बिल्कुल अंजलि, ब्रिटिश आदिवासी संघर्ष को लेकर हम बात करें तो अयोध्या नाथ सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम के माध्यम से भारत के 200 साल के उपनिवेश कालीन इतिहास के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है।
2: जी बिल्कुल।
1: उन्होंने अपनी पुस्तक में आदिवासी संघर्षों का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया था, तभी यह तय हो गया था कि आदिवासियों और ब्रिटिश कंपनी के बीच संघर्ष को टाला नहीं जा सकेगा।
2: जी बिल्कुल।
1: उम्मीद के मुताबिक जल्द ही इसकी शुरुआत भी हुई और उन 200 सालों में कुल मिलाकर 125 छोटे बड़े विद्रोह और संघर्षों की जानकारी हमारे सामने आती है।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि इन विद्रोहों के पीछे मुख्य वजह थी आदिवासियों की सदियों से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें सीमित करने का प्रयास। देश के अलग अलग इलाकों में ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश शासन ने आदिवासी समुदाय के रहन सहन आजीविका को अलग अलग ढंग से प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन इन सभी मौकों पर उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। छोटा नागपुर का आदिवासी बहुल इलाका वर्ष 1765 में ब्रिटिश व्यवस्था में शामिल हुआ था। ब्रिटिश नियंत्रण की इस कोशिश का मतलब यह था कि उन्होंने आदिवासियों के सदियों से चली आ रही पारंपरिक शासन व्यवस्था को प्रभावित किया, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकार सीमित कर दिए गए, स्वयं की शासन व्यवस्था को संचालित करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। ब्रिटिश कंपनी अपनी आय सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों पर नियंत्रण चाहती थी, तब उन्होंने नियम बनाकर कुछ किसानों को भूस्वामी बना दिया और कुछ को पट्टेदार घोषित कर दिया।
1: बिल्कुल।
2: यहीं से लगान वसूलने की व्यवस्था लागू हुई।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि हमने बात की ब्रिटिश आदिवासी संघर्ष को लेकर, यही जानते हैं संघर्ष के केंद्रीय बिंदु को लेकर।
2: जी बिल्कुल।
1: साथियों, यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि आखिर आदिवासी समुदाय औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ लड़ाई में क्यों शामिल हुए? क्या वे किसी के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, या उनका लक्ष्य अपना शासन हाथ में लेना था?
2: जो
1: वास्तव में वे किसी को पराजित करने के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनकी इस लड़ाई के मुख्य रूप से दो लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के हाथों संसाधनों को छीने जाने का विरोध, और दूसरा लक्ष्य था अपने सामाजिक सांस्कृतिक

0: व्यवस्थाओं और पहचान का संरक्षण।
1: जी बिल्कुल,
0: भले ही स्थानीय स्तर पर ये विद्रोह आदिवासी समुदाय के नेतृत्व में आरंभ हुए थे, लेकिन एक बार इनकी शुरुआत होने के बाद इसे तमाम अन्य समुदायों का भी समर्थन मिला।
1: जी,
0: आदिवासी संघर्ष की एक खास बात यह भी रही अंजलि कि उनकी लड़ाई हमेशा अपनी स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने की रही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से जूझते हुए कभी उनकी कोशिश किसी राज्य पर शासन करना, दूसरे समुदाय को गुलाम बनाना या संसाधनों पर एकाधिकार की नहीं रही है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारे श्रोता साथियों से संविधान और आदिवासी संघर्ष जो रहा था उसको लेकर ढेर सारी बातें चल रही हैं। अगले रविवार को हमारी फिर से मुलाकात होगी श्रोता साथियों के साथ संविधान से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों के साथ में।
0: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
3: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मुली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
2: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
5: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
6: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
5: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
2: हिंडो स्कूल जा अपड़े अपड़ा भी अपना पूरा करो
6: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
5: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
6: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
7: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधू कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे बाए हफ्तिंग ना कही दी दू ने मने की दू कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूधस पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नो दूधस पीवू है
8: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है
4: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
7: नाना अंजलि बुन हूँ था का
4: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
7: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
4: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है आज धरती माता नु संबल है
7: होवे अंजलि पुन आपरे भाई बहन थकी आपरे अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करू आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपरी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
4: होवे होवे जागृति पुन आपरे भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपरी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपरी पहचान है हर बूंद नु मोल
0: आपड़े सानो वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल। स्वागत करती हूं आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगट रेडियो 90.8 FM। श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं आज के पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, अगला कार्यक्रम होगा प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में। श्रोता साथियों, फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इस कार्यक्रम को लेकर आएगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे हमारे मेहमानों के जीवन परिचय को। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पारशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बता ही रही हूँ, इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा 7:30 पर गांधी जी को पाने का एक प्रयास, गांधी आत्मदर्शन। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 8:30 पर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। श्रोता साथियों, इन्हीं कार्यक्रमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444

साथियों, मैदान में जीत केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, उसके पीछे अनुशासन, अभ्यास, हार न मानने का जज्बा होता है। जी हाँ, खेल हमें केवल जीतना नहीं सिखाता, बल्कि गिरकर फिर उठना और लगातार आगे बढ़ना सिखाता है।

0: जी हाँ साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारश।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर एक नए महान पुरुष की जीवन परिचय के साथ में। जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारा विषय है भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को लेकर। इनकी जो जयंती है वो हर वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाई जाती है। ये दिन हमें खेलों के महत्व को समझने और देश के महान खिलाड़ियों के योगदान को याद करने का अवसर देता है। आज हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि एक ऐसे खिलाड़ी के जीवन के बारे में जिनकी हॉकी की कला ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जिन्हें प्यार से हॉकी का जादूगर कहा गया है।
0: बिल्कुल अंजलि, मेजर ध्यानचंद केवल एक महान खिलाड़ी ही नहीं थे बल्कि अनुशासन, मेहनत, देशभक्ति और खेल भावना के प्रतीक भी थे। उन्होंने ऐसे समय में भारत का गौरव बढ़ाया जब देश स्वतंत्र नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदानों में जब भारतीय टीम जीतती थी तब भारत का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता था। उनका जीवन आज भी खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में अगर आपको बताएं तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, में हुआ था। उनके पिता का नाम समेश्वर दत्त सिंह था। अंजलि, उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। पिता की नौकरी के कारण परिवार को अलग अलग स्थानों पर रहना पड़ा। ध्यानचंद जी का बचपन सामान्य परिस्थितियों में बीता। बचपन में उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन वे विश्व के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में गिने जाएंगे। उनका जीवन ये साबित करता है कि महानता किसी व्यक्ति के जन्म के साथ नहीं आती बल्कि निरंतर मेहनत, अभ्यास और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, बचपन में उनका खेलों के प्रति विशेष झुकाव नहीं था, लेकिन आगे चलकर हॉकी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि उन्हें हॉकी से इतना लगाव था कि वे खाली समय में अभ्यास करते रहते थे।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे उनके खेल में ऐसी कुशलता आने लगी कि वे मैदान पर गेंद को अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रसिद्ध हो गए। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ध्यानचंद वर्ष 1922 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। सेना में रहते हुए उन्हें हॉकी खेलने का भरपूर अवसर मिला क्योंकि जागृति जी, सेना में अनुशासन और नियमित अभ्यास ने उनके खेल को और मजबूत बना दिया।
0: बिल्कुल,
1: वे देर रात तक चांदनी में हॉकी का अभ्यास करते थे, इसी वजह से उनके नाम के साथ चंद जुड़ गया और वे ध्यान सिंह से ध्यानचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है श्रोता साथियों कि प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर अभ्यास और अनुशासन कितना जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि, ध्यानचंद जी ने कम उम्र में भारतीय सेना में प्रवेश किया। सेना का वातावरण अनुशासन और जिम्मेदारी से भरा हुआ था और इसी वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेना में रहते हुए उन्हें हॉकी खेलने का अवसर मिला। उन्होंने हॉकी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना बल्कि उसे अपने जीवन का लक्ष्य भी बना लिया। वे मैदान पर घंटों अभ्यास करते थे, वे अपनी कमजोरियों को पहचानते थे और उन्हें दूर करने के लिए लगातार मेहनत करते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अभ्यास को सफलता की कुंजी मानते थे। वे जानते थे कि प्रतिभा तभी चमकती है जब उसके पीछे मेहनत और अनुशासन होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मन से हुआ। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए जर्मन को हराया और स्वर्ण पदक जीता। ध्यानचंद के खेल की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। उनके शानदार नियंत्रण, गेंद पर पकड़ और गोल करने की क्षमता ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके खेल को देखकर जागृति जी, लोगों को लगता था जैसे हॉकी की गेंद उनके स्टिक से चिपकी हुई है। इसी कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने 1936 के बर्लिन ओलंपिक के बारे में बताया, यही हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं चंद नाम पढ़ने की कहानी को लेकर।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ध्यानचंद के नाम के साथ चंद जुड़ने के पीछे एक प्रसिद्ध कारण बताया जाता है। वे रात में चांदनी रात के समय भी हॉकी का अभ्यास किया करते थे। उस समय उनके साथी उन्हें मजाक और स्नेह से चंद कहने लगे। धीरे धीरे यही नाम उनके

0: जीवन का हिस्सा बन गया और वे दुनिया भर में ध्यानचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, ये घटना हमें बताती है कि सफलता पाने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित हो सकता है। जब दूसरे लोग आराम कर रहे होते थे तब ध्यानचंद अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करते थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, ध्यानचंद जितने महान खिलाड़ी थे उतने ही सरल और अनुशासित व्यक्ति भी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने कभी अपनी प्रसिद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे अभ्यास, अनुशासन और टीम भावना को बहुत महत्व देते थे। उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण टीम और देश का सम्मान था। यही कारण है कि उनका नाम केवल हॉकी के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीय खेल संस्कृति में भी सम्मान के साथ लिया जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी के जीवन परिचय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से, तो अंजलि बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि साथियों हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही बात कहना चाहेंगे आपसे कि ध्यानचंद के खेल की सबसे बड़ी ताकत थी गेंद पर असाधारण नियंत्रण, क्योंकि जागृति जी वे मैदान में परिस्थितियों को बहुत तेजी से समझते थे। विरोधी खिलाड़ियों की स्थिति को देखकर तुरंत निर्णय लेते और अपने साथियों के लिए गोल करने का अवसर बनाते।
1: बिल्कुल,
0: उनकी खेल शैली में गति, नियंत्रण, धैर्य और टीम वर्क का अद्भुत मेल था। आज के खिलाड़ियों के लिए भी उनका जीवन एक उदाहरण ही है कि खेल में केवल शारीरिक ताकत पर्याप्त नहीं होती, मानसिक एकाग्रता, अनुशासन और निरंतर अभ्यास भी उतने ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, अगर यही 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के बारे में हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद के अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: भारतीय हॉकी टीम ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीता। इस सफलता ने भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ध्यानचंद के खेल ने दुनिया के खेल प्रेमियों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। भारतीय टीम की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत हॉकी के क्षेत्र में दुनिया की मजबूत टीमों में से एक बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ध्यानचंद के लिए यह केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके खेल के माध्यम से भारत का नाम दुनिया में ऊंचा हो रहा था।
0: बिल्कुल जागृति जी, मेजर ध्यानचंद्र को उनके शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने 1965 में पद्मभूषण से सम्मानित किया था। उनके सम्मान में भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस दिन श्रोता साथियों खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है और देश भर में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद्र का जीवन बच्चों और युवाओं को कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। अगर किसी बच्चे को खेल पसंद है तो परिवार और समाज को उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हर बच्चा खिलाड़ी बने यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे को खेल और शारीरिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। खेल बच्चों में अनुशासन बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास विकसित करते हैं, टीम भावना सिखाते हैं, हार को स्वीकार करना सिखाते हैं। इसी के साथ जागृति जी शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाते हैं, नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैदान में मिली हार अंत नहीं होती, वह अगली जीत की तैयारी होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बता रहे हैं, तो मेजर ध्यानचंद जी का जीवन देशभक्ति का भी उदाहरण है। उन्होंने ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। उस देश में भारतीय खिलाड़ियों की जीत देशवासियों के लिए गर्व और उत्साह का कारण बनती थी। जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती थी तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ भारत की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती थी।
0: बिल्कुल,
1: ध्यानचंद ने अपने शानदार खेल से भारत की पहचान को मजबूत किया। उनकी देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं श्रोताओं, बल्कि उनके कार्यों में दिखाई देती है। वे अपने खेल को देश के सम्मान से जोड़कर देखते थे। और रही बात अनुशासन और मेहनत की, तो श्रोताओं ध्यानचंद जी की सफलता का सबसे बड़ा आधार उनकी मेहनत और अनुशासन ही था। वे नियमित अभ्यास करते थे, अपने खेल की छोटी छोटी कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। आज के युवाओं के सामने बहुत सारे प्रकार के आकर्षण और डिस्ट्रेक्शन है। ऐसे समय में ध्यानचंद जी का जीवन हमें याद दिलाता है अंजलि कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और व्यक्ति नियमित मेहनत करें तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सफलता हमें संदेश देती है कि प्रतिभा हमें शुरुआत दिला सकती है, लेकिन निरंतर मेहनत ही हमें मंजिल तक पहुंचाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, हमारे गाँव में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो केवल सही अवसर, मैदान और प्रोत्साहन की।
1: बिल्कुल,
0: कई बच्चे आर्थिक परिस्थितियों के कारण खेलों में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गांव में उपलब्ध खाली स्थान को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जा सकता है। बच्चे कबड्डी, खो खो, दौड़, फुटबॉल, हॉकी और अन्य स्थानीय खेलों में भाग ले सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करके बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जा सकता है। श्रोता साथियों, मेजर ध्यानचंद्र जी का जीवन हमें बताता है कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी से उत्कृष्ट कार्य करना भी देश की सेवा है। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। उन्होंने यह दिखाया कि मैदान में मेहनत करने वाला खिलाड़ी भी देश के लिए उतना ही सम्मान अर्जित कर सकता है जितना किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाला व्यक्ति। आज के युवा भी अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे देश और समाज के हित में उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत के महानतम खिलाड़ियों में स्थान प्राप्त है। उनके नाम से देश में अनेक खेल संस्थान, पुरस्कार और प्रतियोगिताएं जुड़ी हुई है। उनका जीवन भारतीय खेल इतिहास की अमूल्य विरासत है। श्रोता, उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई पदक या पुरस्कार मात्र नहीं, बल्कि वो प्रेरणा है जो उन्होंने करोड़ों भारतीयों को दी है। उन्होंने दिखाया कि भारतीय प्रतिभा विश्व मंच पर किसी से कम नहीं। मेजर ध्यानचंद जी का निधन 3 दिसंबर 1969 को हुआ। उनके निधन से भारतीय खेल जगत ने एक महान सितारा खो दिया, लेकिन महान व्यक्तित्व कभी वास्तव में समाप्त नहीं होते। उनके विचार, उपलब्धियां और जीवन से मिलने वाली सीख हमेशा जीवित रहती है। आज भी जब भारत में हॉकी की चर्चा होती है श्रोताओं, तो ध्यानचंद जी का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक का जादू भले ही इतिहास का हिस्सा बन गया हो अंजलि, लेकिन उनकी मेहनत, अनुशासन और देश प्रेम का जादू आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। यही महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम भी अपने चुने हुए क्षेत्र में पूरी निष्ठा से मेहनत करें और अपने कार्यों से अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, अब समय हो चला है, तो साथियों को हम कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम कथा कहानी को एक नए शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है बही खाता। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि व्यापारी अपनी दुकान का बही खाता इसलिए संभाल कर रखता है ताकि उसे पता रहे कि कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना बाकी है। लेकिन क्या कभी हमने अपने जीवन का बही खाता खोला है श्रोताओं? नहीं, क्योंकि कितना समय हमने सीखने में लगाया ये हम नहीं जानते, कितना समय दूसरों की मदद में दिया ये हम नहीं जानते, कितनी बार असफल होकर हमने फिर कोशिश की ये भी हम नहीं जानते, कितने सपने हमने केवल सोचे और कितनों के लिए कदम बढ़ाया ये भी हम नहीं जानते। शायद जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर इंसान के पास एक अदृश्य बही खाता होता है। उसमें रुपए पैसे नहीं बल्कि हमारे कर्म, फैसले, समय और संस्कार जमा होते हैं। इसी विचार को समझाने वाली कहानी है एक युवा की। उस युवा का नाम है निखिल। ये कहानी आज मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज की कहानी का शीर्षक है बही खाता। श्रोताओं, कहानी शुरू होती है इस तरह से। निखिल नाम का एक युवा है। निखिल एक छोटे से कस्बे का साधारण लड़का था। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पिता हमेशा कहते थे, बेटा दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन हिसाब हमेशा बड़ा साफ होना चाहिए। निखिल को पिता की बात सिर्फ व्यापार से जुड़ी लगती थी। वो सोचता था कि पिता हर शाम बैठकर हिसाब किताब क्यों करते हैं, कौन आया, कितना सामान लिया, कितना पैसा दिया, सब कुछ एक पुरानी लाल बही में लिखा जाता था। निखिल पढ़ाई पूरी कर चुका था और अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे उसके सपने थे। वो चाहता था कि अच्छी नौकरी मिले, शहर जाए और अपनी जिंदगी बदल दे। लेकिन दोस्तों, उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वो अपने समय का हिसाब ही नहीं रखता था। सुबह देर से उठता था, मोबाइल पर घंटों समय बिता देता था, दोस्तों के साथ बिना उद्देश्य घूमता रहता और फिर रात में कहता, कल से मेहनत शुरू करूंगा। उसका कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसके पिताजी ने उसे दुकान पर बुलाया और कहा, निखिल आज दुकान का हिसाब तुम लिखोगे। निखिल ने बही खोली और पूरे दिन का हिसाब लिखने लगा। शाम को उसके पिताजी ने पूछा, बताओ आज कितना आया और कितना गया। निखिल ने तुरंत हिसाब बता दिया। पिता मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अब एक और हिसाब करोगे। निखिल ने पूछा, किसका? पिता ने कहा, अपने जीवन का। श्रोताओं, निखिल हंस पड़ा। वो बोला कि जीवन का कभी कोई बही खाता होता है क्या? तभी पिताजी ने कहा, होता है बेटा, बस उसमें रुपए नहीं लिखे जाते। उन्होंने बही का एक खाली पन्ना खोला और ऊपर लिखा, निखिल के जीवन का बही खाता। फिर उन्होंने पहला कॉलम बनाया, जमा, दूसरा खर्च। इस पर निखिल ने पूछा, इसमें क्या लिखना है पिताजी? तब पिताजी बोले, जमा में लिखेंगे सीखा हुआ ज्ञान, अच्छे संस्कार, मेहनत, अनुभव, रिश्ते, दूसरों की मदद और अच्छे कर्म। फिर उन्होंने दूसरी कॉलम की ओर इशारा किया और खर्च में क्या लिखेंगे ये बताया। खर्च में लिखेंगे व्यर्थ गया समय, आलस्य, झूठ, गलत संगति, बेवजह का गुस्सा और ऐसे फैसले जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं। निखिल एकदम चुप हो गया। तभी पिताजी ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे खाते में क्या ज्यादा है? निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वो अपने कमरे में गया। पहली बार उसने अपने दिन का हिसाब लगाया। सुबह 2 घंटे मोबाइल में चले गए थे, फिर लगभग 1 घंटा बिना काम के दोस्तों के साथ चला गया, पढ़ाई के लिए तय समय में से भी काफी समय टालने में निकल गया। और निखिल ने सोचा कि अगर मैं पैसे ऐसे ही खर्च करता तो शायद कुछ महीनों में खाली हो जाता, फिर मैं अपना समय इतनी आसानी से क्यों खर्च कर रहा हूँ। अगले दिन उसने पिता की बही से एक खाली पन्ना लिया, ऊपर लिखा, आज का हिसाब। उसने तय किया कि हर रात वो अपने दिन का हिसाब लिखेगा। पहले दिन उसने लिखा, जमा। जमा में लिखा, 2 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा व्यायाम, घर के काम में मदद। खर्च में लिखा, 3 घंटे मोबाइल चलाया, 1 घंटा बेवजह घूमा। अगले दिन उसने मोबाइल का समय कम कर दिया। इसी तरह दोस्तों, तीसरे दिन उसने पढ़ाई का समय बढ़ा दिया। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पास पहले से ज्यादा समय है। असल में समय बड़ा नहीं था, समय की बर्बादी कम हुई थी। कुछ महीने बाद निखिल ने एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत हर किसी के लिए आसान नहीं होती है दोस्तों, और निखिल के लिए भी आसान नहीं थी। कई बार वो असफल हुआ। दोस्तों ने कहा, छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा। लेकिन अब निखिल अपने जीवन के बही खाते को समझ चुका था। उसने अपने पन्ने पर लिखा, असफलता खर्च नहीं, अनुभव के रूप में जमा है। वह फिर से मेहनत करता रहा। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया, निखिल सफल हो गया। उसने सबसे पहले पिता को फोन किया, पिताजी आपका बही खाता काम कर गया। पिताजी हंसे, मेरा नहीं बेटा, तुम्हारा। निखिल घर आया, पिता ने वही पुरानी लाल बही निकाली। निखिल ने कहा, पिताजी आज समझ आया कि पैसा कमाने से पहले इंसान को अपने जीवन का हिसाब समझना चाहिए। तभी पिता ने कहा, और याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं है, सबसे बड़ा लाभ है ऐसा इंसान बनना जिस पर खुद को भी गर्व हो। निखिल ने बही के आखिरी पन्ने पर लिखा, आज से मैं हर दिन अपने जीवन में कुछ अच्छा जमा करूंगा। समय बीतता गया दोस्तों, निखिल नौकरी में आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। हर रात वो खुद से 3 सवाल पूछता था, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसके लिए क्या अच्छा किया, आज मैंने अपना कितना समय सही जगह लगाया।
साथियों धीरे धीरे उसे समझ आया कि जीवन की असली सफलता बैंक खाते में जमा रकम से कहीं बड़ी होती है। अगर किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन समय का उपयोग नहीं करना आता तो उसका जीवन गरीब हो सकता है। अगर किसी के पास साधन कम है लेकिन सीखने की इच्छा, मेहनत और अच्छे कर्म है तो वह भविष्य का सबसे बड़ा धनवान हो सकता है। आज के युवा साथियों को इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि युवा अवसरों के ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया उनके सामने खुली हुई है। शिक्षा के साधन है, तकनीक है, इंटरनेट है, नई नई संभावना है, लेकिन इन सब के बीच सबसे मूल्यवान चीज है समय। पैसा खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, सामान खो जाए तो फिर खरीदा जा सकता है। कई बार असफलता के बाद सफलता भी मिल सकती है, लेकिन जो समय बीत गया श्रोताओं वो वापस नहीं आता। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे इस कहानी के माध्यम से कि आप भी अपने जीवन का बही खाता बनाना शुरू कर दीजिए। हर दिन खुद से पूछिए कि आज का कितना समय लक्ष्य के लिए लगा और कितना बिना उद्देश्य के चला गया। समय को बचाना केवल घड़ी देखना नहीं, समय को सही दिशा देना ही असली समय प्रबंधन है। हर दिन कुछ नया सीखने का जीवन के खाते में सबसे बड़ा निवेश है। एक नई जानकारी, एक नई कला, एक नई किताब, एक नया अनुभव, ये सभी ऐसी पूंजी है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। इसी के साथ असफलता जीवन के खाते में लाल निशान नहीं है। अगर असफलता हमें अपनी गलती समझाती है तो वो अनुभव बनकर हमारे खाते में जमा होती जाती है। इसलिए श्रोताओं गिरने से डरना नहीं चाहिए, गिरने के बाद उठना सीखना चाहिए। अच्छे रिश्तों को महत्व दे, गलत आदतों को कम करें, अपने लक्ष्य का हिसाब रखें। युवा चाहे तो हर रात अपनी डायरी में केवल 5 बातें लिख सकते हैं श्रोताओं। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कौन सी गलती की, आज मैंने कितना समय बचाया, कल मुझे क्या बेहतर करना चाहिए, जैसा कि निखिल ने भी किया था। श्रोताओं इन 5 सवालों के जवाब धीरे धीरे व्यक्ति को खुद से मिलने लगते हैं। कल्पना कीजिए श्रोताओं कि एक युवा ने लगातार 5 वर्षों तक अपने जीवन का बही खाता संभाला। उसने रोज थोड़ा सीखा, रोज थोड़ा सुधार किया, गलतियों से सबक लिया, समय की कीमत समझी, लोगों का सम्मान किया, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत की। तो 5 साल बाद उसके खाते में केवल नौकरी या पैसा नहीं होगा, उसके पास होगा ज्ञान, अनुभव, आत्मविश्वास, अच्छे रिश्ते, अनुशासन और पहचान। यही असली पूंजी है और यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। श्रोताओं इस कहानी का सार है, बही खाता हमें एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात सिखाता है। जिंदगी में हर दिन कुछ न कुछ जमा होता है और कुछ न कुछ खर्च होता है। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना है, सवाल ये है कि हमने क्या जमा किया है। हमने समय जमा किया या बर्बाद किया, ज्ञान जमा किया या बहाने दिया, अनुभव जमा किया या डर, रिश्ते जमा किए या दूरी, अच्छे कर्म जमा किए या केवल शिकायतें। हर युवाओं को समझना होगा कि भविष्य अचानक नहीं बनता, भविष्य हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। आज का एक घंटा कल की सफलता बन सकता है श्रोताओं। आज की एक अच्छी आदत आने वाले वर्षों की पहचान बन सकती है। आज की एक छोटी सी कोशिश भविष्य का बड़ा अवसर भी बन सकती है। इसलिए अपने जीवन का बही खाता किसी और के हाथ में मत दीजिए। कल क्या होगा इसका इंतजार भी मत कीजिए, आज क्या जमा करना है ये तय कीजिए। क्योंकि जिंदगी की दुकान में सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं, समय है। और इस दुकान का सबसे बड़ा व्यापारी हम स्वयं हैं। एक दिन जब दुनिया की अंतिम गिनती होगी तब शायद कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने रुपए थे। सवाल ये होगा दोस्तों कि तुमने जो समय पाया था उससे क्या बनाया। इसीलिए आज से अपने जीवन की बही खोलिए, उसमें मेहनत जमा कीजिए, ज्ञान जमा कीजिए, अच्छे संस्कार जमा कीजिए, विश्वास जमा कीजिए, मानवता जमा कीजिए और अपने सपनों की दिशा में उठाया गया हर कदम जमा कीजिए। क्योंकि जीवन का असली मुनाफा वो नहीं जो बैंक खाते में दिखाई देता है, बल्कि वो है जो हमारे चरित्र और हमारे कर्मों में दिखाई देता है। इसलिए याद रखिए, जिस युवा ने अपने समय और कर्मों का हिसाब समझ लिया उसने अपने भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी पा ली। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी बही खाता, और उम्मीद भी करती हूँ कि कहानी और इससे जुड़ी जो भी बातें थी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। क्योंकि अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।

साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करती हूँ कि जो कहानी आज मैंने आपको सुनाई और जो बातें रही इस कहानी के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर भेजिए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वाघ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाघधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaghdhara.org। तो साथियों फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
4: होवे, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
3: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
4: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे, आज नाना कदम है, ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर अपने नियत समय पर नई प्यारी कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से नई और प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं। आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही प्यारी सी कहानी अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम सभी एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन कर लें। तो आइए बच्चों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले कहा था कि आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हमारी कहानी का विषय है छोटी चींटी बड़ा हौसला। जी हाँ बच्चों, एक

दिनों तक मेरे साथियों को भोजन मिल जाएगा। उसने दाने को उठाने की कोशिश की, लेकिन दाना बहुत भारी था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दाने को धीरे धीरे धकेलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद वह थक गई, लेकिन उसने आराम नहीं किया बच्चों, फिर से प्रयास करने लगी। रास्ते में एक टिड्डा बैठा हुआ था। उसने चिंकी को संघर्ष करते देखा और हंसते हुए कहा, अरे ओ छोटी चींटी, तुम इतनी सी हो और ये दाना इतना बड़ा है, तुम इसे कभी अपने घर नहीं ले जा पाओगी। अपना समय और मेहनत क्यों बर्बाद कर रही हो? फिर क्या था बच्चों? चिंकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं यह काम कर सकती हूँ या नहीं। टिड्डा उसकी बात सुनकर फिर से हंसने लगा, लेकिन चिंकी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा आ गया। दाना बार बार उसमें फंस जाता था। चिंकी ने कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता ही नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह निराश हो गई। तभी उसे बच्चों अपनी माँ की बात याद आई, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह सोचकर उसने फिर से प्रयास शुरू किया। उसने दाने को अलग दिशा से धकेला और आखिरकार उसे गड्ढे से बाहर निकाल ही लिया। बच्चों, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी दूर चलने पर तेज हवा आने लगी। हवा के कारण दाना बार बार पीछे खिसक जाता। चिंकी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हवा के सामने उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसी समय उसकी कुछ साथी चींटियां वहां से गुजरी। उन्होंने देखा चिंकी को संघर्ष करते हुए, तो उन्होंने पूछा, तुम अकेले इतना बड़ा दाना क्यों ले जा रही हो? चिंकी ने पूरी बात बताई। यह सुनकर सभी चींटियां उसकी मदद के लिए तैयार हो गईं। अब सभी ने मिलकर दाने को उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी पार करना आसान नहीं था। सभी चींटियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सूखे पत्तों और टहनियों की मदद से एक छोटा सा पुल बनाया, फिर सावधानी से दाने को पुल के ऊपर से पार कराया। बच्चों, काफी मेहनत और धैर्य के बाद वे आखिरकार अपने बिल तक पहुंच गई। पूरे चींटी परिवार ने उनका स्वागत किया। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि इतना बड़ा दाना पूरे परिवार के लिए कई दिनों तक भोजन का प्रबंधन कर सकता था। यह देखकर टिड्डा भी वहां पहुंच गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने शर्मिंदा होकर कहा कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मैंने सीखा कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से असंभव लगने वाले काम भी पूरे किए जा सकते हैं। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, किसी की क्षमता का अंदाजा उसके आकार से नहीं लगाया जाता। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो हार नहीं मानता और वह एक दिन जरूर सफल होता है। जी हाँ बच्चों, उस दिन के बाद से टिड्डे ने भी आलस छोड़ दिया। वह भी मेहनत करने लगा और दूसरों की सहायता करने लगा। जंगल के सभी जीव चिंकी की लगन और साहस की प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, ये कहानी हमें बहुत ही प्यारी सी सीख देती है। यह हमें सीख देती है कि छोटा या बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है। सच्ची सफलता के लिए मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है, तभी हमें असली सफलता मिलती है। तो बच्चों, आज से आप भी आलस छोड़िए और रोजाना दिन का कुछ नियम बनाइए, और उस नियम के आधार पर जब हम चलेंगे तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। एक और में प्यारी सी कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए बच्चों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नंदी लोकी में। जैसा कि बच्चों मैंने आपको गीत से पहले बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब अगली कहानी का हमारा विषय है जादुई पेंसिल। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वह सोचती थी कि वह अच्छी चित्रकार नहीं है। जब भी वह कोई चित्र बनाती, उसे लगता कि उसके दोस्त के चित्र उससे कहीं बेहतर हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। बच्चों, डिब्बा खोलने पर उसमें एक सुंदर पेंसिल रखी हुई थी। पेंसिल के साथ एक छोटा सा कागज भी था जिस पर लिखा था, यह जादुई पेंसिल है, इससे जो भी बनाओगे वह सुंदर बन जाएगा। ये सब पढ़कर बच्चों काव्या बहुत खुश हुई। घर पहुंचते ही उसने एक फूल बनाया। चित्र वास्तव में बहुत सचमुच बना। फिर उसने एक पक्षी बनाया, वह भी शानदार बना। अब काव्या को विश्वास हो गया कि पेंसिल जादुई है। वह रोज उससे चित्र बनाने लगी। धीरे धीरे उसके चित्र और भी अच्छे होते गए। कुछ महीनों बाद स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। काव्या ने उसे पेंसिल से एक सुंदर चित्र बनाया और पहला पुरस्कार जीत लिया। पुरस्कार मिलने के बाद वह खुशी खुशी घर आ गई। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन खेलते खेलते वह पेंसिल तोड़ बैठी। बच्चों, काव्या बहुत रोने लगी। उसे लगा कि अब वह कभी अच्छा चित्र नहीं बना पाएगी। अगले दिन चित्रकला शिक्षक ने उसकी उदासी का कारण पूछा। काव्या ने पूरी बात बता दी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानती हो कि उस पेंसिल में कोई जादू नहीं था? काव्या हैरान रह गई। शिक्षक ने कहा, जादू पेंसिल में नहीं, तुम्हारे विश्वास में था। जब तुम्हें लगा कि पेंसिल जादुई है, तब तुमने डरना छोड़ दिया और पूरे मन से चित्र बनाने लगी। अभ्यास करते करते तुम्हारी कला भी निखर गई। यह सुनकर काव्या को बच्चों अपनी गलती समझ में आ गई। उसने फिर से चित्र बनाना शुरू किया और उसके पास कोई जादुई पेंसिल नहीं थी, लेकिन उसके चित्र पहले से भी सुंदर बनने लगे। कुछ वर्षों बाद वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहती कि जादू किसी चीज में नहीं होता, जादू हमारे आत्मविश्वास और मेहनत में होता है। जी हाँ बच्चों, हमारी सफलता का रहस्य किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, मेहनत और निरंतर अभ्यास में छिपा होता है। जी हाँ बच्चों, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके भीतर छुपी होती है, बाहरी साधनों में नहीं। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते और सफलता का श्रेय किसी वस्तु, व्यक्ति या भाग्य को दे देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि निरंतर सीखने की इच्छा, स्वयं पर भरोसा और आगे बढ़ने का साहस ही हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। बच्चों, इंसान अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेता है जब, तो उसके लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और वह अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। तो यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मैंने जो आपको कहानी सुनाई है, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि बच्चों, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में मैंने आपको जो दोनों कहानियाँ सुनाई है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ बच्चों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नु समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, सफलता सिर्फ उस मुकाम का नाम नहीं है जहां हम पहुंचते हैं। सफलता उस पूरे सफर का नाम है जिसमें हम संघर्ष करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए होते हैं।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को कार्यक्रम हमारे मेहमान के माध्यम से एक नई शख्सियत से आप सभी को रूबरू करवाते हैं, तो आज भी कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि मंजिल पाने वाले तो बहुत होते हैं साथियों, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के सफर को दूसरों के लिए प्रेरणा बना देने वाले बहुत कम होते हैं। और ऐसे ही लोगों की कहानियाँ हमें ये विश्वास दिलाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हौसला बड़ा है तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान की बातचीत भी हमें कुछ ऐसा ही विश्वास दिलाने वाली है साथियों। तो आइए रूबरू होते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान से। सर नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी जानकारी देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम दिलीप रोकड़िया है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा में 5 वर्ष से कार्यरत हूँ।
0: जी जी।
1: मेरा मूल निवास गढ़ी बांसवाड़ा है और बचपन से ही मैं समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों से नजदीक से देखता रहा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही समाज कल्याण विभाग में कार्यरत थे।
0: जी जी।
1: तो उनके कार्यशैली को हमने बचपन से ही आत्मसात कर लिया और एक इनबिल्ट समाज सेवा करने का एक जो मन में था वो होता रहा। पढ़ाई के रूप में हमने पापा के साथ, चूँकि राज्य सरकार में थे, तो प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी थी वो कोटा में हुई है
0: जी।
1: और मिडिल एजुकेशन बीकानेर में हुई, हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन थी वो भरतपुर में और कॉलेज पांसवाड़ा में हुआ। इसलिए हर जगह का अनुभव हमको मिलता रहा और हम अपनी पढ़ाई को समय पर पूर्ण करते रहे। पढ़ाई करने के बाद जैसे परिवार की एक इच्छा थी कि फॉरेन जाएं, तो हुए चले गए। तो एम कॉम करने के बाद हुए 3.5 साल रहे, उसके बाद आए और समाज कल्याण विभाग में मौका मिला तो ज्वाइन कर लिया। 87 से निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। 94 में मैं प्रोबेशन ऑफिसर बना, तब से बाल संरक्षण के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ।
0: जी जी।
1: और रिटायरमेंट के बाद सरकार ने फिर एक मौका दिया बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में, तो मैं निरंतर इस कार्य को करता रहा हूँ।
0: बिल्कुल सर, तो ये तो आपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में और अपने बचपन से जुड़ी ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई। हमारे श्रोता साथी ये बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं सर कि आपका बचपन से ही समाज सेवा को लेकर बहुत अधिक रुचि रही थी। आपने जैसा कि बताया है कि आपके जो माताजी और पिताजी जो थे समाज सेवा को लेकर वो कार्य किया करते थे। यही सर मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहूंगी, हम देखते हैं कि हम जब किसी सफलता के मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम ढेर सारी समस्याओं का सामना करते हैं। कह सकते हैं ना कि हमारा जो जीवन है वो संघर्षमय जीवन बन जाता है। तो सर क्या आपका जीवन भी कुछ इसी प्रकार से था? क्या आपको भी कुछ चुनौतियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ा था?
1: नहीं, चुनौतियां तो नहीं, हाँ परिश्रम जरूर। जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे उसमें परिश्रम करते रहे।
0: जी जी।
1: बाकी ऐसी कोई चुनौती जैसा कुछ रही नहीं। समय समय पर जो भी, चूंकि माता पिता दोनों आर्थिक रूप से सक्षम थे, इसलिए वो भी स्थिति ऐसी नहीं थी।
0: जी जी।
1: जो हमने चाहा हमें मिला, हम अपने उद्देश्य के लिए जितना हम कर सके, जो मेहनत हमें करनी थी वो हमें ही करनी थी। तो चुनौतियां तो नहीं थी, पर हाँ हमने अपने समय पर अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए, इसकी मुझे खुशी है।
0: बिल्कुल सर। अब यही आप हमें ये बताइए कि ये कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि आपके लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, और उस समय आपने खुद को कैसे संभाला?
1: ऐसा समय नहीं आया कि मेरे को कभी ऐसा लगा हो कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। मेरा जीवन बहुत स्मूथ रहा है।
0: जी जी।
1: मैं अपने जो भी लक्ष्य है और जो भी मेरे क्लाइंट हैं, यानी कि जिन तक मुझे पहुंचना है, वो उन तक मैं आसानी से पहुंच पाया। मेरे साथ काम करने वाले बहुत सरल हृदय से मिले, कभी मेरे को तकलीफ उनकी वजह से नहीं हुई, और मैं भी सोचता हूँ कि मेरी वजह से भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए बहुत सरलता के साथ मेरा अपना जीवन जिया है और मैं अपने लक्ष्य को जहाँ तक मैं सोचता हूँ मैंने अपने प्राप्त किया है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं, और सफलता के मुकाम पर है। यही मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से अब ये जानना चाहूंगी कि कह सकते हैं कि आप समाज सेवा को लेकर काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी आपको कोई पसंदीदा शौक है जो आप पूरा करना चाहते थे?
1: स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, परंतु ऐसा कोई विशेष उपलब्धि जैसे कोई बात नहीं रही।
0: जी,
1: क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, तो वो सिर्फ शौक तक ही सीमित रहा, कभी बहुत ज्यादा उपलब्धियां उसमें रही नहीं। पर हाँ, अपने क्षेत्र में हमने काम करके अपने आप को एक नाम कमा लिया। आज हम गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम बाल संरक्षण इकाई में काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और बच्चे हमसे संतुष्ट हैं और हम बच्चों से संतुष्ट हैं।
0: जी जी, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब यहीं आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए कि आज भी आपकी ऐसी कौन सी आदत या मूल्य है जो आपको अपने कार्य से कह सकते हैं कि प्रेम करवाती है या फिर जमीन से जुड़े हुए रखती है?
1: मैं अपने परिवार और ऑफिस को मैं अपनी प्राथमिकता ऑफिस देता हूँ, मेरे कार्य को देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे ऑफिस में मेरी कार्य पूर्ण है या मेरी इज्जत है, तो परिवार में भी मेरी इज्जत है। तो मैं अपने कार्य को प्राथमिकता देता हूँ। उसके लिए अगर मुझे परिवार के किसी सेक्शन को या किसी कार्य को रोकना पड़ता है तो मैं रोकता हूँ। यही मेरी उपलब्धि, मैं अपने आप को मानता हूँ।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब यही मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि एक अभियान है जो आपके कार्य क्षेत्र में चलाया जाता है और कह सकते हैं कि वो काफी प्रसिद्ध भी है, कि अनचाहे बच्चे फेंके नहीं बल्कि हमें दें, तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: अनचाहे बच्चे फेंके नहीं हमें दें, बहुत आवश्यक है अभियान। हम जब से सर्विस में आए थे तब से देखते थे कि बच्चे झाड़ियों में फेंके जाते हैं।
0: जी जी,
1: बच्चे नालियों में फेंक देते थे, अजन्मे बच्चे भी फेंक देते थे, तो उसको पीड़ा होती थी। पर फिर ये जैसे जैसे एक्ट में प्रावधान आते गए, नई नई समस्याएं उनका समाधान निकलते गए, तो सरकार ने इस ओर सोचा, हर हॉस्पिटल में पालने लगाए गए, हर जिले में शिशुगृह है उसी शिशुगृह में पालना लगाया गया।
0: जी
1: और
0: जी,
1: एक अभियान के तहत सबको ये समझाया गया कि आप अगर बच्चे को पालने में या क्रेडल में रखेंगे तो वो सुरक्षित स्थान है, क्योंकि जब भी कोई अनचाहा बच्चा फेंकते हैं तो उसके पीछे कई रीजन होते हैं।
0: जी जी,
1: वो रीजन ये होते हैं, समाज में बदनामी, परिवार में बदनामी, उस चीजों से बचने के लिए, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो ऐसे फेंक करके चले जाते थे। तो सरकार ने ये पालने लगा करके और फिर ये मुख्य कह दिया कि भाई आपकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा, कभी आपकी इंक्वायरी नहीं होगी उसके संबंध में अगर उसमें रखा जाता है तो, और वो सुरक्षित स्थान पे रह करके और सुरक्षित जगह पे चला जाएगा।
0: जी जी,
1: जैसे ही कोई बच्चा पालने में आता है तो 2 मिनट के अंदर, विदिन 2 मिनट ट्यूटर बसता है और जो भी स्टाफ है वो जाकर बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लेता है,
0: बिल्कुल
1: विदिन टाइम, और बच्चे को प्रॉपर जो मेडिकल उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो बच्चा सुरक्षित रहता है, बच्चे की हेल्थ पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही कानूनन रूप से जैसे अगर बच्चा फेंके जाता है, कानूनन रूप से वो दोषी हो जाता है।
0: जी
1: अगर
0: जी,
1: वो झाड़ी में या नाली में फेंके गया है तो पुलिस केस होने की संभावना रहती है, पुलिस उसको ये मानती है कि वो हत्या करने का आरोपी है।
0: जी जी,
1: तो उस तरह का केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई होने की संभावना बनी रहती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस कार्रवाई से मैं से अभिभावकों से जो ये इस तरह के काम करते हैं, अनचाहे बच्चे फेंकते हैं, उनके लिए तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई आप निश्चिंत होकर के दें, और वो बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनको बाल कल्याण समिति 2 महीने के अंदर लीगल फ्री करती है।
0: जी जी,
1: और लीगल फ्री करके कारा के माध्यम से गोद देने की कार्रवाई शुरू होती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा,
1: बच्चे सुरक्षित स्थान पर और उनका भविष्य उज्जवल हो ऐसा प्रयास करते हैं।
0: जी सर, तो सर आपने जैसा कि बताया हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी तरीके से, अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यदि कोई परिवार किसी कारणवश बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या ऐसे कानूनी विकल्प हैं जो वो अपना सकते हैं?
1: मतलब कोई परिवार है वो किसी भी कारण से, मतलब बच्चे से नफरत भी करता हो, बच्चे से प्यार भी करता हो और वो पालने योग्य नहीं है, वो बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होकर के 0 से 18 साल तक के बच्चे को 100 रुपए के स्टाम्प पे सरेंडर कर सकता है।
0: जी जी,
1: सरेंडर करना नहीं चाहे तो वो अपनी असमर्थता बताते हुए बच्चे को रख सकता है कि साहब मैं इसको पालने में सक्षम नहीं हूँ मेरे, तो सरकार बाल कल्याण समिति उसको बाल गृह में रख करके 18 वर्ष तक पाल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और सरेंडर के दिशा में अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो सारे जो परिवार के हक हकूक हैं वो बच्चे के साथ बाल कल्याण समिति के पास आ जाते हैं। बाल कल्याण समिति 6 महीने तक उसका इंतजार करती है कि वापस उसका मन परिवर्तित हो जाए और बच्चे को वापस ले जाना चाहे।
0: जी जी।
1: तो वो ले जा सकता है। 6 महीने बाद उसको लीगल फ्री करके और उसको गोद देने के प्रोसेस में डाल देती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब यहीं आप हमें ये बताइए कि गोद लेने की प्रक्रिया में ऐसे कौन से नियम है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: गोद लेने के लिए पहले परिवार का सक्षम होना आवश्यक है। परिवार की उम्र का भी एक प्रावधान है। न्यूबॉर्न चाइल्ड अगर वो लेना चाहते हैं
0: जी जी
1: तो 90 साल दोनों की जॉइंट उम्र होनी चाहिए। 110 साल के ऊपर जॉइंट जो 110 साल हो जाए उसके ऊपर बच्चे को नहीं दिया जा सकता
0: जी।
1: और इन बिटवीन जैसे उनके एज वाइज बच्चे को दिया जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक स्थिति ये सब देखी जाती है। उसके लिए कारा में ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई जाती है। होम स्टडी रिपोर्ट DCPU के माध्यम से होम स्टडी रिपोर्ट बनाई जाती है
0: जी सर।
1: और सारी चीज देखने के पश्चात जब फैमिली फिट घोषित हो जाती है तो बच्चे को गोद देने के प्रोसेस में लाया जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी तरीके से ये बता दिया है कि किस प्रकार से जो अनचाहे बच्चे फेंके नहीं हमें दे ये जो अभियान है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब यहीं अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि कोई भी नवजात शिशु असुरक्षित न रहे।
1: मैं तो सभी को, आपके श्रोतागण को ये निवेदन करना चाहूंगा, बच्चे भगवान की देन है। वो चाहे अनचाहे हो चाहे हो, बच्चे अनचाहे उस अभिभावक के प्रेम की निशानी या गलती की निशानी जो भी है वो है। तो बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें। बच्चों को सुरक्षित रखें और सुरक्षित हाथों में दें, अपने ज्ञान की वृद्धि करें, अपने नियर से भी जो भी समाज बाल अधिकारिता विभाग के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क करें और बच्चे को सुरक्षित हाथों में पहुंचा दे। यही हमारे लिए एक बहुत बड़े बच्चों के प्रति संवेदना होगी और हम सब मिलकर के स्वस्थ बच्चे और शिक्षित बच्चे बना सके, इसी कामना के साथ मैं उनको यही राय देना चाहूंगा कि आप इधर उधर फेंकने के बजाय सुरक्षित हाथों में दें।
0: बिल्कुल सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपना कीमती अमूल्य समय हमारे श्रोता साथियों को दिया। धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद वागड़ रेडियो।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे मेहमान जुड़े हुए थे और उनके जीवन परिचय से हम रूबरू हो पाए हैं साथियों, जैसा कि हमने ढेर सारी बातों के माध्यम से ये जाना कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि अनगिनत प्रयास, अनुशासन और खुद पर विश्वास छिपा हुआ होता है। दोस्तों, जब इंसान गिर कर भी उठना सीख लेता है और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे भी सीख लेना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मेहमान की बातचीत से हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं। अब जैसा कि साथियों, कार्यक्रम में बातें तो हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारे मेहमान में।

दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारे मेहमान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई शख्सियत के साथ में कार्यक्रम हमारे मेहमान में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी साथी कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: बहनों, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाइयों ने बोनो, जैवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो नो रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, सत्य की राह दिखलाई, अहिंसा का संदेश दिया। बापू ने भारत को आजादी का नया परिवेश दिया। सादा जीवन, ऊंचे विचार, यही उनकी पहचान है। गांधी जी के आदर्शों से बने देश महान है।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हम जान रहे थे सबकी गांधी नारी प्रकरण के बारे में, और जैसा कि हमने जाना था अंजलि जी कि गांधी जी ने मनु बहन की परीक्षा ली थी।
1: बिल्कुल,
0: अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाए तो साथियों, इसी यात्रा में जब गांधी जी ने सभी साथियों को दो दो की टोली में गाँव में जाने को कहा, तब उस टोली में एक बंगाली भाषा जानने वाला हो ऐसी व्यवस्था की गई थी।
1: बिल्कुल,
0: मालती देवी चौधरी जब यात्रा में शामिल होने के लिए आई अंजलि जी, तब गांधी जी ने उन्हें अकेले ही जाने को कहा, क्योंकि उनकी मातृभाषा बंगला थी, उनको दो भाषी की क्या जरूरत है। गांधी जी का रास्ता लोगों पर विश्वास रखकर उन्हें विश्वास पात्र बनाने का था। साथियों, इसी भांति उन्होंने अनेक पुरुषों को उन कामों को करने का प्रशिक्षण दिया जो स्त्रियों के माने जाते थे। कईयों को खाना पकाना सिखाया था, तो कईयों को बीमारों की सेवा टहल करना और बालकों की देखभाल करना सिखाया था अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, गांधी जी को स्त्रियों द्वारा किए जाने वाली सेवा और किसी भी काम को सूक्ष्मता व जी लगाकर करने की आदत के प्रति बहुत आदर व श्रद्धा थी। चंपारण में किसानों की तकलीफ का पता लगाकर वे दूसरे स्थानों पर गए थे।
0: बिल्कुल,
1: वहाँ के गाँव में रचनात्मक काम करने के लिए जिन्हें छोड़ गए थे उनमें महिलाएं अधिक थी। उनमें कस्तूरबा, मणि बहन पारीख और दुर्गा भाई देसाई जैसी अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी गांधी जी ने उनको गांवों की शालाएं चलाने का सुझाव दिया।
0: बिल्कुल,
1: शाला का काम सफाई से शुरू होता था। कुएं के आसपास की कीचड़ भरी जमीन पर सूखी माटी डालकर वहां मच्छरों के अंडे पनपने वाले गड्ढों को भर देना, महिला

0: सचमुच कशिश उस महीने कोठार का हिसाब बहुत सरलता से पूरा हुआ। गांधी जी का महिलाओं के प्रति रखा हुआ विश्वास सत्य सिद्ध हुआ।
1: जी हाँ दिलीप जी, साथियों महिलाओं और महिलाओं की समस्याओं के बाबत गांधी जी के विचार उनकी सत्य अहिंसा विषयक शोध से ही उत्पन्न हुए हैं। सत्य उन्हें स्त्री पुरुष के सह नागरिकत्व के विचार तक ले गया है और अहिंसा उन्हें आत्मा की शक्ति यानी कि सत्याग्रह शक्ति तक ले गया है। कह सकते हैं अंजलि जी के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में गांधी जी सत्य अहिंसा के क्रियान्वयन को ध्रुव तारा मानते थे। इस विषय के जीवन सूत्र गांधी जी को अपनी हीये की सूझ स्व अनुभव और चिंतन मनन से प्राप्त हुए हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, गांधी जी के मन में स्त्रियों की शक्ति के विषय में अगाध विश्वास था। उन्हें अबला कहना उन्हें महिलाओं का अपमान करने के बराबर लगता था।
0: बिल्कुल,
1: बल शब्द यदि पशु बल जैसा अर्थ किया जाए तो अपनी शारीरिक शक्ति के कारण पुरुष और स्त्री की तुलना में अवश्य सबल कहलाएगा। बल का अर्थ नैतिक बल किया जाए तो स्त्री पुरुष की तुलना में कम बलवती सिद्ध नहीं होगी।
0: जी जी,
1: उसकी सहन शक्ति, उसकी त्याग परायण व्रति, उसकी हिम्मत देखकर गांधी जी उसे अबला मानने को तैयार ही नहीं थे। अंजलि जी वे मानते थे कि यदि स्त्री का पुरुष ने शोषण न किया होता यानी कि स्त्री भोग में पड़ी पुरुष के वश में न होती तो स्त्री अपनी अनंत शक्ति संसार को बता सकी होती।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी ने कहा है कि यदि स्त्री पुरुष की सहचारिणी है तो स्त्री की समस्त प्रवृत्ति को सूक्ष्मता से जानने का पुरुष को अधिकार है। उतना ही अधिकार स्त्री को भी पुरुष की तमाम प्रवृत्तियों के बारे में जानने का है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है नारी प्रकरण को लेकर, ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना सबके गांधी नारी प्रकरण में कि किस तरीके से गांधी जी ने कहा कि यदि स्त्री पुरुष के सर चढ़नी है तो स्त्री के समस्त प्रवृत्ति को सूक्ष्मता से जानने का पुरुष को अधिकार है, उतना ही अधिकार स्त्री को पुरुष की तमाम प्रवृत्तियों के बारे में जानने का है। कायदे कानून बनाने वाले पुरुष ने तथा कथित अबला जाति पर जो अंतपतन लादा है उसके लिए उसे भयंकर दंड भोगना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: पुरुष के जाल से मुक्त होकर कशिश स्त्री पुरुष द्वारा निर्मित कायदे कानून के खिलाफ बगावत छेड़ेगी, तब अहिंसक होते हुए भी उनका विद्रोह कम प्रभावी नहीं होगा। अपनी रक्षा के लिए स्त्रियां पुरुषों पर आधारित क्यों रहे, उनको केवल अपनी शक्ति चरित्र की शुद्धता और ईश्वर पर ही निर्भरता रखनी चाहिए। पुरुष जाति ने स्वयं को अनेक प्रकार के अनिष्टों हेतु उत्तरदायी बनाया है, उन सब में नारी जाति का उसने जो दुरुपयोग किया है उसके जितना निष्कर्ष या पाशवी अनिष्ट कोई और नहीं। स्त्री अधिक श्रेष्ठ है, आज भी वह स्वयं बलिदान तितिशा नम्रता श्रद्धा और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी ने लिखा है श्रोता साथियों कि मेरा अपना अभिप्राय तो ऐसा है कि बुनियादी तौर पर पुरुष की भांति स्त्री भी एक ही मानव वंश है, वैसे ही इसकी समस्या भी अनंत एक ही होनी चाहिए। दोनों में एक ही आत्मा निवास करती है, दोनों एक ही जीवन जीते हैं, एक ही प्रकार की शब्द स्पर्शादि भावनाएं अनुभव करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सक्रिय सहायता के बिना जी नहीं सकते। स्त्री अहिंसा की साक्षात प्रतिमा है। अहिंसा का अर्थ है कशिश निर्बाध प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें पुनः कष्ट सहन की असीम शक्ति। पुरुष की जन्मदात्री के सिवाय ऐसा अपरंपार कष्ट सहन की शक्ति अधिक से अधिक संसार में और कौन बता सकता है। श्रोता साथियों, स्त्रियों के अधिकार के संबंध में जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मेरे मतानुसार कानून को स्त्री और पुरुष के बीच किसी भी तरह की असमानता नहीं रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: पुत्र और पुत्री के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, कहा जा सकता है कि कानून बनाने का कार्य अधिकांशतः पुरुषों के हाथ में रहता है। उनके द्वारा सदैव विवेक दृष्टि का उपयोग करना दिखने में नहीं आता। वर्तमान में तो स्त्री जाति की अवनति दूर करने में महाभागीरथ प्रयत्न तो हिंदू धर्म शास्त्र में ही स्त्रियों के विषय में विद्यमान आलेखों में दूर करने का है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आज महिलाएं राजनीति में बहुत कम भाग लेती हैं। जो लेती हैं वे स्वतंत्र रूप से नहीं सोचती, जैसा उनके माता पिता या पति कहते हैं वे वैसा ही करती हैं। अपने पराधीनता देखकर स्त्रियों के खास अधिकार की दलील पर दृष्टिपात करती हैं, और ऐसा करने के बजाय महिलाएं सभी बहनों के मताधिकार हेतु पंजीकृत करें, उनको व्यवहारिक शिक्षण प्रदान करें या फिर करवाएं। अंजलि जी, उनको स्वतंत्र विचार करने योग्य बनाएं, जात पात के जंजाल से छूटें और पुरुष उनकी शक्ति एवं त्याग को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाएं, ऐसा समय लेकर आएं।
0: बिल्कुल,
1: स्त्रियों को ऐसा मानने की कतई जरूरत नहीं है कि हम पुरुषों के अधीन हैं या फिर हम निम्न दर्जे के हैं। स्त्रियों पर जो जो गलत एवं अनिष्टकारी अंकुश है उन सबके खिलाफ विद्रोह करने के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ। कोई भी अंकुश तभी लाभदायी रहता है जब वह स्वेच्छा से हो और प्रसन्नता से स्वीकार किया जाए।
0: बिल्कुल,
1: सविनय अवज्ञा से किसी को हानि संभव नहीं है। उपद्रव करने की शुद्धता और समझदारी के साथ विरोध, ये दो सविनय अवज्ञा के मुख्य लक्षण हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल, यही बात करें तो श्रोता साथियों, पुरुषों को स्त्रियों की शील बाबत चिंता व्यक्त करते देखकर गांधी जी कहते हैं कि स्त्रियों की शील संबंधित यह रुग्ण चिंता किस लिए। पुरुषों की शील के बारे में क्या स्त्रियों को कुछ कहने का अधिकार है। स्त्रियों की शील रक्षा के लिए नियम बनाने का अधिकार पुरुषों को अपना क्यों मान लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बाहर से लादा नहीं जा सकता, यह तो आंतरिक विकास का और व्यक्तिगत साधन का विषय है। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार या बलात्कार के बारे में गांधी जी से अनेक बार प्रश्न पूछे जाते। इस बाबत गांधी जी के विचार हैं कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग हो ही नहीं सकता। वह डर के मारे वश में हो जाए अथवा अपनी पवित्रता का सामर्थ्य उसे न लगे, तभी वह राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य का शिकार हो जाती है।
1: जी
0: यदि उसका शारीरिक बल बहुत अधिक होगा तो उसकी पवित्रता वह उसे वश में करे उससे पहले उसे मरने का बल प्रदान करेगी। सीता रावण के वशीभूत नहीं हुई तो वह उसकी तरफ विषैली दृष्टि भी नहीं डाल सका।
1: जी जी,
0: गांधी जी बहनों को यह सीख देते हैं कि वे सीता जैसी हिम्मत विकसित करें, इसका नतीजा यह आएगा कि वे निर्भय हो जाएंगी। यह शिक्षण माता पिता और पति को देना है। ईश्वर के प्रति आस्था पैदा करने से यह शिक्षण मिलता रहता है। जिसमें ऐसी आस्था आ गई कशिश, वे सब तरह के भय से मुक्त हैं। इस प्रकार गांधी जी की दृष्टि से स्त्री के शील की रक्षा का मुख्य साधन उनकी निर्भयता है। निर्भयता उसे अनंत ईश्वर की आस्था से ही प्राप्त होती है। वे मानते हैं कि यदि स्त्री की स्वयं मरने की तैयारी हो तो उस पर कोई जुल्म नहीं ढा सकता। कारण यह कि जब तक स्त्री मन से ढीली नहीं पड़ जाती तब तक उस पर जुल्म हो ही नहीं सकता। परंतु साथ ही साथ गांधी जी यूँ भी कहते हैं कि स्त्री पर हमला हो उस समय वह हिंसा अहिंसक का विचार न करे। उस समय उसका परम धर्म है स्वरक्षा। जो साधन उस समय उसे सूझे उसका प्रयोग करके वह अपनी पवित्रता की रक्षा करे। ईश्वर ने नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं, जो बल दिया है उसका उपयोग वह करेगी तो ऐसा करते हुए वह मर जाएगी। अहिंसक पुरुष अथवा स्त्री स्वयं अपनी अथवा अपने स्त्री वर्ग की इज्जत का बचाव करते हुए मृत्यु को गले लगाए तो यह श्रेष्ठतम बहादुरी होगी।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से नारी प्रकरण को लेकर बातचीत कर रहे थे और देख रहे हैं कि ये बातें हमारी पूरी हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन में इसी प्रकरण से जुड़ी और ढेर सारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार साथी। दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मारू नाम गिल्ली है ने मुँह मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक के आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही हती, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है, तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नू दूधस पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नू दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने हमारे श्रोता साथियों से बातचीत की थी महात्मा गांधी और भारतीय संविधान में। हमने जाना था कि कैसी व्यवस्था चाहते हैं गांधी जी। इसी के साथ हम जान पाए थे पंचायत, तालुका, जिला पंचायत और ढेर सारी बातों के बारे में। यही आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है गांधी जी और समानुभूति के बारे में।
1: बिल्कुल अंजलि, गांधी जी और समानुभूति के बारे में अगर हम बात करें अंजलि, तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक बड़ी बहस इस बात को लेकर थी कि भारत में जाति व्यवस्था और छुआछूत को कैसे समाप्त किया जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: अंबेडकर का मानना था कि कानून व्यवस्था, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में विशेष अधिकारों से जाति व्यवस्था को तोड़ा जा सकता है। वे कहते थे कि इसके बिना समाज की ऊंची जातियां कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म न होने देगी।
0: जी बिल्कुल।
1: वहीं महात्मा गांधी समानुभूति के प्रयोग और अभ्यास से भारतीय मानस में बदलाव की संभावना देखते थे। उनका मानना था कि जब ऊंची जातियों के लोग ये महसूस करने लगेंगे कि जाति व्यवस्था और छुआछूत कितना घृणित व्यवहार है, ये धर्म नहीं बरबर अधर्म है, तब वे खुद इस व्यवस्था को तोड़ देंगे।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी को आधुनिक विश्व में सहानुभूति का व्यवहारिक प्रतिनिधि मानने के कुछ कारण हैं। समानुभूति का मतलब है किसी भी विषय, स्थिति, समस्या, असमस्या को उसी व्यक्ति के मनोभाव से महसूस करना जो वह महसूस कर रहा है, उसमें अन्य व्यक्ति का अनुभव या पूर्वाग्रह या दया भाव का नहीं होता है। समानुभूति की स्थिति में हम दो व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, वहाँ दया भाव का बेचारापन नहीं होता है, वहाँ हम एक ही होते हैं, मदद पाने वाला या उस स्थिति को जीने वाला भी वही और मदद करने वाला भी वही होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि समानुभूति के अभ्यास में कुछ व्यवहार महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें हम महात्मा गांधी जी के जीवन व्यवहार से भी जोड़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: मसलन सुनना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, महात्मा गांधी जी वस्तुतः संवाद में शामिल होते थे। उनके संवाद में किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी बात पूरी तरह से कहने और उसकी व्याख्या का पूरा स्थान मौजूद रहा।
0: जी जी।
1: उन्होंने असहमति को हमेशा पूरा सम्मान दिया। महात्मा गांधी जी ने हमेशा संवाद में यह स्थापित किया कि सहमत असहमत होना अपने स्थान पर संभव है, किंतु उपेक्षा करना या खारिज करने का भाव प्रदर्शित करना नैतिक व्यवहार नहीं है।
0: जी।
1: महात्मा गांधी जी किसी के बारे में फौरी तौर पर राय बनाने से बचते थे। वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समग्रता में समझ कर ही उसके बारे में राय कायम करते थे।
0: जी जी।
1: यही वजह है साथियों कि गांधी जी हम सभी के जीवन में शामिल हैं। तमाम उदाहरण ऐसे भी हैं जहां गांधी जी ने किसी को सुझाव देने से पहले उस बात को खुद पर लागू किया और इसके बाद ही उसका सुझाव दिया।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था कि अपने जीवन का हर काम खुद करने की तत्परता वे रखते थे और काम किया जाए। बीमार व्यक्ति की सेवा के लिए वे किसी को निर्देश नहीं देते थे, वे खुद सेवा करते थे। मानव मल ढोने के विषय पर उन्होंने खुद मल साफ करना शुरू किया, जिससे बहुत से जो लोग हैं वो सहमत नहीं थे।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयास करूँगा जो भारत को हर प्रकार की गुलामी, परावलंबन से मुक्त कर दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल होगा।
1: जी हाँ।
0: उनमें महिलाओं को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। हम न किसी का शोषण करेंगे, न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे। मैं देसी और विदेशी के फर्क से भी नफरत करता हूँ। यह है मेरे सपनों का भारत। इससे भिन्न किसी चीज से संतोष नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
0: यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा 10 सितंबर 1931 में कहे गए थे।
1: बिल्कुल अंजलि। तो अंजलि, जैसा कि हमने बात की महात्मा गांधी और भारतीय संविधान को लेकर, हमने जाना गांधी और समानुभूति को लेकर, आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे संविधान और आदिवासी को लेकर। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि गीत से पहले हमने गांधी और समानुभूति के बारे में जाना था,
1: जी जी,
0: यही हम जानते हैं संविधान और आदिवासी के बारे में।
1: श्रोता साथियों, देश के आदिवासियों यानी कि मूल निवासियों की ये शिकायत रही है कि कथित मुख्य धारा के समाज ने उन्हें कभी वह अधिकार प्रदान नहीं किया जिसके वे वास्तव में अधिकार रहे हैं। राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनके नेतृत्व और भूमिका को वह तवज्जो नहीं मिली जिसके वे हकदार थे।
0: जी हाँ,
1: अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से लेकर संविधान समस्त भारतीय शासन तक आदिवासियों की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं आया।
0: बिल्कुल,
1: संविधान सभा की बहसों में देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को लेकर अलग अलग सदस्यों का नजरिया जानना सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन बहसों में भी आदिवासी अस्मिता का सवाल अत्यंत मुखर ढंग से उठा था।
0: बिल्कुल,
1: पांचवी और छठी अनुसूची के प्रावधान इसी सुचिंतित बहसों का नतीजा है।
0: और अंजलि, आदिवासी अस्मिता का सवाल यानी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक धारा जिसे एक बड़ा तबका मुख्य धारा भी कहते हैं,
1: जी जी,
0: उसमें आदिवासी समुदाय या अनुसूचित जनजाति समुदाय व्यापक रूप से उपेक्षा का शिकार रहा है। वहीं एक तथ्य यह भी है कि ऐतिहासिक और आदिवासी समुदाय अपनी अस्मिता की रक्षा करने तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई में लगातार सक्रिय बने रहे।
1: जी बिल्कुल,
0: आदिवासी समुदायों ने कम से कम 10 बड़े विद्रोह किए जो या तो उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए आवश्यक थे या फिर उपनिवेशवाद के विरुद्ध थे।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय ने पूरी आजादी और अपनी अस्मिता के सवाल पर कभी कोई मध्यमार्गी स्थिति नहीं अपनाई। उन्होंने इन मुद्दों पर कभी कोई समझौता नहीं किया। सच तो यही है कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और आर्यों के भारत आगमन से बहुत पहले से वे यहाँ रह रहे हैं। यही एक समुदाय है जिसने कभी भी पूर्ण आजादी और अस्मिता के सवाल पर न तो कोई मध्य मार्ग अपनाया न ही कोई समझौता किया। आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और आर्यों के भारत आने से पहले से ही यहाँ निवासरत हैं। आदिवासियों या अनुसूचित जनजाति समाज के सामने वास्तव में अपनी सामाजिक संस्कृति अस्मिता को बचाने का प्रश्न खड़ा है, जिसे अक्सर उनकी आर्थिक गरीबी में ऐसा खोल दिया जाता है कि वास्तविक प्रश्न छुप जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और यही बात करें मुख्य धारा और मूल पहचान को लेकर, तो अक्सर मीडिया में राजनेताओं के मुख से तथा अन्य माध्यमों से हमें सुनने को मिलता है कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना है। आखिर क्या है ये मुख्य धारा? साथ ही मुख्य धारा है जातिवादी, पूंजी संग्रह केंद्रित और संसाधनों के अधिकतम शोषण की परिभाषा से पैदा होने वाली जीवन शैली और नीतियाँ। समाज ने आदिवासियों को उनकी मूल पहचान के साथ अपनाने के बजाय उनके सामने हमेशा अपनी पहचान त्यागने की शर्त रखी है। यही वजह है कि समुदाय हमेशा हिचकिचाहट में रहा। इस समाज ने संभवतः सबसे पहले उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था की मुखालफत की, क्योंकि इनकी रुचि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके मुनाफा कमाने में कभी नहीं रही। यह हमेशा से मानते रहे कि जंगल जमीन का व्यापार भी नहीं होना चाहिए और निजी संपत्ति का संग्रह भी अनुचित है। इसीलिए उन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही ब्रिटिश दखल का विरोध करना शुरू कर दिया। अन्य समुदाय लगभग 100 सालों तक सक्रिय नहीं हुए और ब्रिटिश व्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते रहे।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ बात करें संघर्ष के इतिहास की, तो श्रोता साथियों, उपनिवेश कालीन भारत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इनके संघर्ष को वाजिब स्थान नहीं मिला। आदिवासी आंदोलनकारियों ने एक अलग ही वैचारिक आध्यात्मिक धरातल का विद्रोह किए थे। वे कभी भी भारत की जाति वर्ण संप्रदाय आधारित व्यवस्था से अपना स्वाभाविक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। इसके बाद राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्हें उस तरह का नेतृत्व और पहचान नहीं मिली जितनी कि अन्य समुदाय को हासिल हुई।
0: बिल्कुल,
1: भारत के संविधान ने उन्हें उनकी

0: मूल पहचान लुटाने की कोशिश की और यह कितनी कड़वी बहस है यह संविधान सभा के दस्तावेज से पता भी चलता है। भारत के संविधान ने आदिवासियों यानी कि मूल निवासियों के साथ किस हद तक न्याय किया है यह जानने से पहले जरूरी है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को जाना जाए। इसके बिना बात की चर्चा के कोई मायने नहीं रहेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल अंजलि, ब्रिटिश आदिवासी संघर्ष को लेकर हम बात करें तो अयोध्या नाथ सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम के माध्यम से भारत के 200 साल के उपनिवेश कालीन इतिहास के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: उन्होंने अपनी पुस्तक में आदिवासी संघर्षों का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया था तभी यह तय हो गया था कि आदिवासियों और ब्रिटिश कंपनी के बीच संघर्ष को टाला नहीं जा सकेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: उम्मीद के मुताबिक जल्द ही इसकी शुरुआत भी हुई और उन 200 सालों में कुल मिलाकर 125 छोटे बड़े विद्रोह और संघर्षों की जानकारी हमारे सामने आती है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि इन विद्रोहों के पीछे मुख्य वजह थी आदिवासियों की सदियों से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें सीमित करने का प्रयास। देश के अलग अलग इलाकों में ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश शासन ने आदिवासी समुदाय के रहन सहन आजीविका को अलग अलग ढंग से प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन इन सभी मौकों पर उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। छोटा नागपुर का आदिवासी बहुल इलाका वर्ष 1765 में ब्रिटिश व्यवस्था में शामिल हुआ था। ब्रिटिश नियंत्रण की इस कोशिश का मतलब यह था कि उन्होंने आदिवासियों के सदियों से चली आ रही पारंपरिक शासन व्यवस्था को प्रभावित किया, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकार सीमित कर दिए गए, स्वयं की शासन व्यवस्था को संचालित करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। ब्रिटिश कंपनी अपनी आय सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों पर नियंत्रण चाहती थी, तब उन्होंने नियम बनाकर कुछ किसानों को भूस्वामी बना दिया और कुछ को पट्टेदार घोषित कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: यहीं से लगान वसूलने की व्यवस्था लागू हुई।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि हमने बात की ब्रिटिश आदिवासी संघर्ष को लेकर, यही जानते हैं संघर्ष के केंद्रीय बिंदु को लेकर।
0: जी बिल्कुल।
1: साथियों यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि आखिर आदिवासी समुदाय औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ लड़ाई में क्यों शामिल हुए? क्या वे किसी के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए लड़ रहे थे या उनका लक्ष्य अपना शासन हाथ में लेना था?
0: जो
1: वास्तव में वे किसी को पराजित करने के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनकी इस लड़ाई के मुख्य रूप से दो लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के हाथों संसाधनों को छीने जाने का विरोध और दूसरा लक्ष्य था अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और पहचान का संरक्षण।
0: जी बिल्कुल।
1: भले ही स्थानीय स्तर पर ये विद्रोह आदिवासी समुदाय के नेतृत्व में आरंभ हुए थे, लेकिन एक बार इनकी शुरुआत होने के बाद इसे तमाम अन्य समुदायों का भी समर्थन मिला।
0: जी बिल्कुल।
1: आदिवासी संघर्ष की एक खास बात यह भी रही अंजलि कि उनकी लड़ाई हमेशा अपनी स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने की रही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से जूझते हुए कभी उनकी कोशिश किसी राज्य पर शासन करना, दूसरे समुदाय को गुलाम बनाना या संसाधनों पर एकाधिकार की नहीं रही है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारे श्रोता साथियों से संविधान और आदिवासी संघर्ष जो रहा था उसको लेकर ढेर सारी बातें चल रही हैं। अगले रविवार को हमारी फिर से मुलाकात होगी श्रोता साथियों के साथ संविधान से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों के साथ में।
1: साथियों यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
3: तो हमरो बोनू अरी सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मोली में जावू है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
4: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
6: होवे
0: કેમકે ખૂન મે આયરન તત્વની કમી થકી એનિમિયા રોગ આપણને થઈ શકે.
1: જલ્દી થકાન થવી, શારીરિક કમજોરી, યાદદાશ્ત મે કમી, શ્વાસ ફૂલવું, આ સબ એનિમિયાના લક્ષણ હે.
0: હવે ભાઈ બોનુ, આ લક્ષણ આપણને આપણે મય દેખાય તો આપણને આપણે પાય વાળા રાજકીય સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર માટે જઈને એનિમિયાની નિઃશુલ્ક જાંચ કરાવીશું.
1: આંગણવાડી કેન્દ્ર ને રાજકીય સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર માટે એનિમિયા ઉપચારની ગોળીએ નિઃશુલ્ક મળે હે.
0: હોપે એનિમિયા થકી બચવા બદલે આપણને ખવાના મેં દાળ, પત્તેદાર સબ્જી, ગુડ, બાજરા, તિલ, લીંબુ ને સંતરા, ગોબી, તરબૂચ, આંવલા, ટમાટર નું સેવન કરવું સુવે.
1: હોવે આ સબ સાવધાની રાખંગા ને આ સબ સબ્જી ને દાળ ખંગા તો એનિમિયા થકી બચી શકંગા.
4: વાગડ રેડિયો એવમ વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત.
3: આપણે ક્યારે વિચાર કર્યો હે કે જૈયા પેડની છાવ મેં આપણે રહ, યા આપણને કેટલી શાંતિ મળે હે, જેની હવા મેં આપણે હાલ રહ, એ ભી આપણા થકી કઈ આશ રાખે હે. હવે અગર પેડ ને રહેંગા તો આપણે હરતે જીવંગા. પ્રકૃતિ આપણી જરૂરત નથી બલ્કિ આપણી જિમ્મેદારી હે. એક પેડ લગાડંગા, પાણી ને બચાડંગા ને આપણી ધરતી ને જીવન દાન આલંગા.
0: હવે પ્રકૃતિ ને બચાવો, ભવિષ્ય ને હદારો.
1: હવે આજે નાના નાના કદમ હે એ આબાવાળા કાલ ને બદલાવ ની શરૂઆત હે.
0: વાગડ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત.
4: દોસ્તો, અગર ચાહો તેજ દિમાગ ઓર સ્વસ્થ જીવન તો આયરન યુક્ત તત્વ સે ભરપૂર કરે ભોજન. ખૂન મે આયરન તત્વો કી કમી હોને પર એનિમિયા રોગ હો સકતા હે. જલ્દી થકાન હોના, શારીરિક કમજોરી, યાદદાશ્ત મે કમી, સાંસ ફૂલના, યે સભી એનિમિયા કે હી લક્ષણ હૈ. લક્ષણ મહેસૂસ હોને પર સાથીઓ, અપને નજદીકી રાજકીય સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર મે એનિમિયા કે નિઃશુલ્ક જાંચ જરૂર કરવાએ. હિમોગ્લોબિન કા સ્તર 7 સે કમ હોના અતિ ગંભીર સ્થિતિ કો દર્શાતા હૈ. એસે સ્થિતિ મે ચિકિત્સક કો જરૂર દિખાએ ઓર ઉચિત ઉપચાર લે. વાગડ રેડિયો એવમ વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત.
5: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर. मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर. आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी साथियों कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हम रसोई की खुशबू के साथ जो दादी नानी के अनुभव होते हैं उसकी मिठास को लेकर हाजिर होते हैं. श्रोता साथियों, व्रत का दिन हो तो अक्सर मन में सवाल आता है कि ऐसा क्या बनाएं जो व्रत में खाया भी जा सके, स्वादिष्ट भी हो, शरीर को दिन भर ऊर्जा भी देता रहे. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण चल ही रहा है और बहुत से जो लोग हैं वो पूरा महीना व्रत रखते हैं. ऐसे में इन दिनों में जब हम व्रत रखते हैं तो शरीर में कमजोरी भी आ जाती है और बहुत सारी चीजें हमें महसूस होने लगती है. ऐसे में अगर व्रत के साथ साथ हम खाने पीने की कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखें तो हमारा जो व्रत है वो सफल हो जाता है. दादी माँ कहती है श्रोता साथियों कि व्रत का मतलब केवल पेट खाली रखना नहीं बल्कि अपनी आस्था के साथ शरीर का भी ध्यान रखना है. इसलिए आज की रसोई में हम लेकर आए हैं दो ऐसी ही आसान रेसिपी जिन्हें व्रत के दौरान आप सभी लोग बनाकर खा सकते हैं. आज हम बात करेंगे शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के पौष्टिक लड्डू की और इसी के साथ राजगिरे के आटे की स्वादिष्ट रोटी की. तो चलिए बोलते हैं दादी माँ की रसोई का पिटारा और शुरू करते हैं आज की स्वादिष्ट तैयारी. लेकिन आप सभी जानते हैं कि तैयारी शुरू करने से पहले हम सभी एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन अवश्य करेंगे क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है. तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को. आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में.

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के पौष्टिक लड्डू हम कैसे बनाएं, साथ ही राजगिरे के आटे की स्वादिष्ट रोटी के बारे में। जी हाँ श्रोता साथियों, शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए होगी, तो आप जल्दी से पेन और कॉपी ले लीजिए और उसे फटाफट से लिख लीजिए। हमें शकरकंद चाहिए 2 से 3 मध्यम आकार के, बादाम चाहिए 8 से 10, काजू चाहिए 8 से 10, अखरोट चाहिए 3 से 4, किशमिश चाहिए हमें 1 से 2 बड़े चम्मच, नारियल का बूरा चाहिए 2 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर चाहिए 1/2 चम्मच, घी चाहिए 1 से 2 चम्मच, गुड़ या व्रत में अनुमत जो मिठास हमें चाहिए स्वाद अनुसार वो हमें चाहिए होगी। सजाने के लिए थोड़ा सा नारियल का बूरा और कटे हुए मेवे हम ले सकते हैं। श्रोता साथियों, व्रत के नियम अलग अलग परिवार और परंपराओं में अलग हो सकते हैं, इसलिए सामग्री अपने व्रत के नियमों के अनुसार आप रख सकते हैं। तो ये सामग्री जब हम ले लेते हैं, उसके बाद अब बात आती है श्रोता साथियों कि आखिरकार इसे बनाए कैसे। तो सबसे पहले शकरकंद को हमें अच्छी तरीके से धोकर उबाल लेना है। ठंडा होने के बाद उसके छिलके उतार कर उसे अच्छी तरह मैश कर लें। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर बादाम, काजू और अखरोट को हल्का सा भून लें। इन्हें ठंडा करके दरदरा पीस लें। अब उसी कढ़ाई में मैश किया हुआ शकरकंद डालकर कुछ मिनट श्रोता साथियों हमें धीमी आंच पर भून लेना है। हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका अतिरिक्त पानी जो है वो सूखने न लगे। जब वो सूख जाए तो उसमें पीसे हुए मेवे, किशमिश और नारियल का बूरा डालकर हमें उसे चलाना है। अब स्वाद के अनुसार गुड़ और व्रत में जो भी हम मिठाई के तौर पर जैसे कि शक्कर हम खाते हैं तो हमें वो ले लेनी है, और आखिर में इलायची पाउडर डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मिला लेना है। मिश्रण छोटा साथियों थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथों पर हल्का घी लगाकर छोटे छोटे गोल लड्डू बना लें। ऊपर से नारियल का बूरा, कटे हुए मेवे लगाकर सजाएं। तो इस तरीके से व्रत के लिए तैयार हैं हमारे स्वादिष्ट से शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। जी हाँ श्रोता साथियों, शकरकंद ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, इसलिए व्रत में लंबे समय तक काम करने के लिए इससे हमें ऊर्जा मिल सकती है। इसमें फाइबर होता है जो कि पेट को भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद करता है। बादाम, अखरोट, काजू, ये सब वसा और प्रोटीन से मिलते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ड्राई फ्रूट्स लड्डू को पौष्टिक बनाने के साथ साथ स्वाद भी बनाते हैं। घर पर बनाए लड्डू में सामग्री की मात्रा अपने स्वाद और जरूरत के अनुसार नियंत्रित भी की जा सकती है। इसलिए दोस्तों, व्रत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि खूब ज्यादा तला भुना खाया जाए। थोड़ी मात्रा में पौष्टिक खाना और पर्याप्त पानी लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये हमने जाना शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के बारे में। आगे हम जानेंगे राजगिरे के आटे की स्वादिष्ट रोटी हम कैसे बनाए। बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में हम बीच बीच में मनोरंजन करते हैं गीतों के साथ में, तो क्यों ना दोस्तों आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत ही पौष्टिक व्रत के नाश्ते के बारे में जाना कि किस तरीके से हम शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना सकते हैं, यही कुछ मीठे के साथ तीखा होना भी जरूरी है, क्योंकि व्रत जब हमारा होता है तो हमें बहुत सी बार चटपटा खाने का मन करता है। ऐसे में राजगिरे के आटे की मसाले वाली रोटी हम बना सकते हैं। इसके लिए श्रोता साथियों, हमें सामग्री चाहिए: राजगिरे का आटा 1 कप, उबला हुआ आलू 1 बड़ा, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची 1 बारीक कटी हुई, हरा धनिया 2 बड़े चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर हमें ले लेना है, अदरक 1/2 चम्मच बारीक कटी हुई, घी सेकने के लिए और गुनगुना पानी। श्रोता साथियों, व्रत के दौरान मसाले और सामग्री जिस तरीके से हमें चाहिए होते हैं उसी अनुसार हमें लेने हैं। इनमें से कोई चीज अगर हम व्रत में नहीं खाते हैं तो वो हमें हटा देनी है। अब इसे बनाने की विधि के बारे में जाने तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में राजगिरे का आटा हमें लेना है। इसमें उबला हुआ जो आलू है उसे अच्छी तरह मैश करके डालना है। अब इसमें सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया डाल देना है। सारी सामग्री को हाथों से श्रोता साथियों अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। राजगिरे का आटा गेहूं के आटे की तरह आसानी से नहीं बनता है श्रोता साथियों, इसलिए उबला हुआ आलू रोटी को बांधने में मदद करता है। अब आटे की छोटी लोई लें, इसे 2 प्लास्टिक शीट या गीले कपड़े के बीच रखकर हाथ से धीरे धीरे दबाते हुए रोटी का आकार दें। तवा गर्म करें और रोटी को सावधानी से तवे पर डालें। एक तरफ सिक जाए तो धीरे से पलटें। दोनों तरफ थोड़ा सा घी लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें। इस तरीके से गर्मा गर्म मसालेदार राजगिरे की रोटी तैयार हो जाती है। इसे व्रत में हम खा सकते हैं और इसके लिए हम दही, धनिया, मूंगफली की चटनी भी बना सकते हैं और उसके साथ भी खा सकते हैं। श्रोता साथियों, राजगिरा प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। आलू जो है वो रोटी को ऊर्जा और नरमी देता है। मेवा या दही के साथ खाने पर भोजन को और पौष्टिक बनाया जा सकता है। घर पर बना भोजन जो है उसमें हमें मसाले और तेल की जो मात्रा है उसका ध्यान हम रखते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि राजगिरे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर रोटी बार बार टूट रही है तो थोड़ा और उबला आलू मिलाएं। लोई को सीधे बेलने के बजाय हथेली से दबाकर रोटी का आकार हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये राजगिरे की मसालेदार रोटी भी हम व्रत में बनाकर खाएं। तो श्रोता साथियों, देखा आपने, व्रत का खाना भी स्वादिष्ट, आसान और पौष्टिक हो सकता है। शकरकंद से बने लड्डू मीठे की इच्छा पूरी करेंगे और राजगिरे की रोटी पेट को भरने के साथ भोजन में विविधता भी लाएगी। लेकिन दादी माँ एक बात हमेशा कहती है कि व्रत में पकवान कम, संतुलन ज्यादा जरूरी है। इसलिए तला भुना भोजन बार बार खाने के बजाय उबली भुनी और कम तेल वाली चीजों को प्राथमिकता दें। शरीर को पानी की जरूरत होती है, इसलिए अपनी स्वास्थ्य स्थिति और व्रत के नियमों के अनुसार पर्याप्त तरण लेते रहें। आज की दादी माँ की रसोई में हमने सीखी 2 आसान सी रेसिपी, शकरकंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और राजगिरे के आटे की मसालेदार रोटी। आप भी इन्हें अपने घर में बनाइए और बताइए कि दादी माँ की आज की कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। फिर मिलेंगे श्रोता साथियों रसोई की एक नई खुशबू और दादी माँ के एक नए नुस्खे के साथ में। तब तक याद रखिए, स्वाद वही अच्छा जो सेहत का भी रखे ख्याल। दादी माँ की रसोई में हर निवाला बने कमाल।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

इस की ट्रांसलेशन कर दूं, उनके जमाल रुख पे, उनके रोशन चेहरे पे, जमाल रुख रोशन चेहरा, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके रोशन चेहरे पे उन्हीं की रोशनी थी।